एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में

0: प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। भर्तृहरि के नीतिक शतकम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या से अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी कभी नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 202। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की 6 कड़ी आप सुन सकेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम 7 बजे से।

31 मिनट से सुनेगा हम हैं राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक महबूब खान पर। आज सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। इसके अंतर्गत अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत के चलमल नारियल अम्मा की कहानी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत किचन टिप्स। संवादक हैं सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन। जयमाला सुनवाएंगे शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत नाटक यादों की परछाइयां भाग 4, लेखन सुरेंद्र गुलाटी का, निर्देशन दीनानाथ। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, और रात्रि 10 बजे से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष

अब से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम, लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने

0: सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति, और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का दरबारी कानड़ा। इस बंदिश के बोल हैं, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति तिरुनाल कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिजन में अग्रणी है व्यास ऋषि, और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कानड़ा। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय, तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु हैं। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम हैं। तो अब सुनिए राग दरबारी कानड़ा में स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा रचित एक हिंदी भाषा की कीर्तना।

0: राग दरबारी पर आधारित ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। उसी कड़ी में आज आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में अंदाज़ फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में आन फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अमर फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए तनवीर नकवी का लिखा और नौशाद का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है नूरजहां की, फिल्म का नाम अनमोल घड़ी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बरसात फिल्म का गाना। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुरैया की आवाज में बड़ी बहन फिल्म से। गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं हुस्नलाल भगतराम।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार से। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो आज ही के दिन यानी 28 मई को इतिहास में घटित हुए हैं। 1414 में आज ही के दिन खीज खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया और सैयद वंश के शासन की नींव रखी। 1961 में आज ही के दिन मानव अधिकारों के संरक्षण और दुनिया को इनके बारे में जागरूक करने के इरादे से लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डीवी पलुस्कर का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ। भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दार्शनिक और ओजस्वी वक्ता वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन 1883 में हुआ। हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार प्रयाग शुक्ल का जन्म आज ही के दिन 1940 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक गोपाल प्रसाद व्यास का निधन आज ही के दिन 2005 में हुआ। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का निधन आज ही के दिन 1964 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का निधन आज ही के दिन 1954 में हुआ।

इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। सुनते हैं नूरी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, रचना नक्श लयालपुरी की है, धुन बनाई है खयाम ने।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। हीट वेव को लेकर सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष वार्ड तैयारी। डॉक्टरों और नर्सों की टीम 24 घंटे तैनात। सभी CHC में 5-5 बेड आरक्षित किए गए। सदर अस्पताल में हीट वेव मरीजों के लिए 12 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया। लोगों के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी। धूप और लू से बचने की अपील। कंट्रोल रूम के नंबर हैं 0618422672 एवं 0618422693। तापमान 42 डिग्री के पार। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को लू लगने पर प्राथमिक उपचार के संबंध में जरूरी सलाह जारी की है। विभाग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे तुरंत छांव वाले स्थान पर पैर ऊंचा कर लिटाना चाहिए तथा शरीर पर पहने तंग कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। मरीज के शरीर का तापमान कम करने के लिए पंखा या कूलर से हवा करें। ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोंछने और ठंडे पानी से नहलाने की भी सलाह दी गई है। रोगी को ORS घोल, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल अथवा साधारण पानी पिलाना लाभकारी माना गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि मरीज बेहोश हो जाए या पानी पीते ही उल्टी करने लगे तो उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं देना चाहिए। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए सासाराम नगर निगम ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष पहल शुरू की है। रोहतास जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्याव घड़ा स्टैंड मोबाइल वाटर टैंकर के माध्यम से शुद्ध शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य गर्मी और हीट वेव के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों को राहत पहुँचाना है। ईद उल अजहा बकरीद पर्व को रोहतास जिले में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 411 जगहों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कैमूर जिले में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए 86,590 युवाओं ने NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन के बाद जिला नियोजनालय से आयोजित होने वाले जॉब कैंप के जरिए बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का अवसर मिल रहा है। दरअसल कैमूर में कुल निबंधित बेरोजगारों की संख्या 86,590 है, जिसमें 48,980 पुरुष जबकि 37,650 महिलाओं ने NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। भभुआ जिले के अलग अलग हिस्सों औसतन हर रोज खसरा पीड़ित बच्चे सामने आ रहे हैं। इसकी पहचान कर चिकित्सक इलाज भी करा रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बीते 3 सालों में जिले में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। बहरहाल जानकारों का कहना है कि निजी अस्पतालों में हर रोज पीड़ित बच्चे पहुँच रहे हैं। कैमूर जिला अंतर्गत सरकारी स्कूलों की जांच अब बेस्ट प्लस ऐप से होगी। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को हर महीने कम से कम 8 प्रारंभिक और 3 हाई स्कूल का निरीक्षण करना होगा, जबकि सभी DPO 10 प्राइमरी 4 हाई स्कूलों की जांच करेंगे। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को 15 और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 25 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में नामांकन, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, सफाई, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और समग्र संचालन व्यवस्था की जांच की जाएगी।

अवसर पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर भभुआ एवं मोहनिया अनुमंडल में कुल 186 चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। बता दें कि बकरीद पर्व के मौके पर सोशल मीडिया पर प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म निकाह से, आवाज महेंद्र कपूर की।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक, 27 एजेंडों पर लगी मुहर, भूमि अधिग्रहण पर 10% अधिक राशि मिलेगी। इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, अब केंद्रीय और राजकीय परियोजनाओं के लिए रैयत से सीधे भी खरीदी जा सकेगी जमीन, कुल कीमत की 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। राजकर्मियों एवं पेंशन भोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, जुलाई से शुरू होगी TRE4 प्रक्रिया, 20,000 शिक्षकों की बहाली की तैयारी। राज्य में जुलाई से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत 20,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अंतिम स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि TRE4 का नोटिफिकेशन जुलाई में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पूर्व बिहार में आंधी बारिश से तबाही, 8 की मौत, इस खबर को सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तर और पूर्व बिहार के कई जिलों में मंगलवार और बुधवार को आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों में पेड़ और घर गिरने से दबकर 2 बच्चों और 1 बुजुर्ग महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पूर्वी बिहार में 4 लोगों की मौत हुई है। खगड़िया जिले में वज्रपात से परवल के खेत की रखवाली कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, सिपाही बहाली परीक्षा में 7,312 महिलाएं चयनित। बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP को 19,838 नए सिपाही मिले हैं। केंद्रीय चयन परिषद ने बुधवार को मार्च 2025 में विज्ञापित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। SIR सही या चुनाव आयोग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के इस कथन को सभी अखबारों ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग के लिए बुधवार बड़ी जीत का दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण

निरीक्षण को वैध ठहराया और कहा कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश में जान डालती है। SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है, जो लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध निर्माण ढाएं। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को बीकानेर में उच्च स्तरीय बैठक में शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी 5 जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व फलौदी के DM और SP के साथ साथ केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। ऊर्जा बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार दूसरे दिन भी गिरा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स बुधवार को लगातार दूसरे दिन 142 अंक टूट गया, जबकि NSE निफ्टी में मामूली 6 अंक की गिरावट रही। सोना 1,100 रुपये फिसला, चांदी भी टूटी। कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 1,100 रुपये गिरकर 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वैभव ने क्रिस गेल के सर्वाधिक सिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा। युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का एक IPL सत्र में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्यवंशी अब एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेट निदेशक बोबाट ने गत IPL चैंपियन के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस पर बड़ी जीत के बाद टीम के सामूहिक योगदान की तारीफ की। इस जीत से उनकी टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75%, दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है।

0: राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द

0: मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार।

राकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, राजेश रंजन, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, बुल्कीवाली झलना झा, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अथर्व कुमार, रंजन कुमार परदेसी। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मित्रेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

सिलसिला फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। हसन कमाल की रचना थी, धुन बनाई थी शिवहरी ने। इस गाने को सुनना चाहा था धर्मशाला चौखंडी पद से सोनी, सुषमा, आराधना, बिंदु, सरिता और इनकी सभी सखियां, ब्रह्मपुरा मणिगाछी से भाई अच्छीलाल राय, श्रीमती पानो देवी,

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शोले फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की, आनंद पक्षी की रचना थी, धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। इस गाने को सुनना चाहा था थाना मोड़ गढ़नों का रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन निशा, सदा मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। इसी गाने की फरमाइश की थी फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से भाई फटफटिया झा, उदय कांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा साया, आवाज़ आशा भोसले की है, गीतकार हैं राजा मेहंदी हसन और संगीतकार मदन मोहन। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम पोस्ट नोखा से अर्चना देवी, गुड़िया कुमारी, आराध्या कुमारी, राधे कुमारी, शारदा देवी, रंजीता देवी और प्रियंका कुमारी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाई कारी, राय कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है
1: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में रेलवे विद्युत और सड़क निर्माण से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव से संबंधित बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में चल रहे भूमि सुधार को और विस्तार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम होगा।
3: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं।
1: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लिए रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों के इंडोर चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
3: बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी

0: पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी।
1: कैबिनेट ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले के लिए राज्य उच्च पथ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर 3,740 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम कोसी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले 14 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पत्थरघट, पाटलिपुत्र, खैलाट, बैकुंठपुर, गुरारू, पालीगंज, सुपौल, गोपालपुर, गोपालगंज, एकमा, चंडी, बैरिया और साहेबपुर कमाल प्रखंडों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इन पर आरोप पत्र गठित करने के साथ ही इनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है।
2: 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बंद करें अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सिविल सर्जन और डीपीएम की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है इधर तो?
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को व्यापक क्षति हुई है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: जमुई की एक अदालत ने गढ़ी थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 अन्य दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पटना की ATS अदालत ने जाली भारतीय नोट की तस्करी में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में 10,882 युवाओं को नौकरियां मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चुन्नू लाल यादव को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गया के कुरुआ बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यापारी को गोली मारकर 35 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन चौक के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर बेगूसराय के कुरहा ढाला के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के थूसर पंचायत के चकला पहियार में 3 दिन से आतंक फैला रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने मार डाला। तेंदुए के हमले में 3 लोग भी घायल हो गए। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने IPL के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रैयती भूमि के लिए नई नीति, बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। प्रभात खबर ने लिखा है, CM ने दिया तोहफा, राज्य कर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, SIR कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हमारे वैभव सिक्सर किंग, IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केवटी के PDO के 6 ठिकानों पर EOU का छापा। आज अखबार ने लिखा है, नए मानक से स्कूलों में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे वार्ता। विषय होगा कैमूर के इतिहास में रीति रिवाज। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सीमा पटेल। एक और वार्ता आपको सुनवाएंगे हिंदी के विकास में भोजपुरी का योगदान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नंद किशोर तिवारी। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार का समय होगा सुबह 10:45 पर।

शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। कार्यक्रम होगा वंदन, समय होगा शाम 5:10 पर। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी हमारी सेनाओं का धन्यवाद, साथ ही आप फिल्मी गीतों का आनंद भी लेंगे।

भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार हम आपको सुनवाएंगे

आकाशवाणी के पटना केंद्र से समय होगा शाम 6:05 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी लेंगे कृषि उत्पादों से किसान कैसे लाभ लें। भेंट करता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी

भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे से। गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम 7:25 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ए मनपसंद हम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9 बजे से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर।

एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनना ना भूलिएगा रात्रि 10:30 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अखियों के झरोकों से फिल्म का गाना, आवाज़ हेमलता की, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सैनिक से, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में

और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए। इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाएं, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन

1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था जो डाक टिकट

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी

0: कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वार्ता। विषय है कैमूर के इतिहास में रीति रिवाज। वार्ताकार हैं डॉक्टर सीमा पटेल।
3: कैमूर का नामकरण किमृत्य अथवा विंध्य पर्वत के कैमूर पहाड़ी श्रृंखला, जो सोन व टोंस नदियों के बीच स्थापित था, से पड़ा है। प्राचीन चेदी राज्य के निकट कुमार राज्य से भी कैमूर या किमृत्य का अपभ्रंश हो सकता है। यह क्षेत्र पुराणों में वर्णित कारुष देश का एक अंग था। कारुष मनु के छठे पुत्र थे और उन्हीं के नाम से करुष या करख जनजाति का उद्भव हुआ। उत्तरी भारत के छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में से कारुष एक था। यह क्षेत्र पूर्व में सोन, पश्चिम में करमनाशा और उत्तर में गंगा नदियों द्वारा सीमांकित था। कैमूर की पहाड़ियां मध्य पाषाण युग से आज तक जनजातियों का गढ़ रहा है। सोयरी, खरिया, खरवार जैसी जनजातियां अपनी उत्पत्ति यहीं से मानते हैं और आज भी अगड़िया, खरवार, चेरो, उड़ाव, भर, गोण जनजातियां यहां वास करती हैं। यह क्षेत्र अनेक अनार्य असुर जैसे दंतवक्र, भस्मासुर, वृत्तासुर, बाणासुर, बकासुर और उनकी पत्नी पूतना, महिषासुर के सेनापति चंड और मुंद, सुंद की पत्नी तारिका एवं अन्य से जुड़ा हुआ है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा तारिका वध अभी भी दसों तारिका श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है, जब खेती संबंधित सभी कार्य स्थगित होते हैं। परंतु किसी भी जनजाति द्वारा पूर्व में अपने इतिहास को लेखनीबद्ध न करने के कारण उनका अतीत इतिहास के पन्नों से गायब मिलता है। फिर भी लिखित ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव में घटित इतिहास ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास के माध्यम से पुनर्गठित किया जा सकता है। जनजातियों के बड़े बुजुर्गों से उनके स्मृति पर आधारित जनश्रुति को संकलित कर उस क्षेत्र के पुरातात्विक स्रोतों

धार्मिक अवशेषों, वंशावली, सिक्के, लोकगीत, दंत कथाओं से पुष्टि कर इतिहास के उन गायब पन्नों को भरने की चेष्टा की जा सकती है। इसी क्रम में रीति रिवाज भी अतीत की विवेचना में नए ऐतिहासिक मापदंड स्थापित करने में सहयोगी हैं। रीति रिवाज युग युगांतर से अपने आप में सांस्कृतिक विरासत के बीज समाहित किए हुए रहते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य धरोहर के स्वरूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हीं के माध्यम से थमाया जाता है। इनमें निरंतरता अथवा बदलता स्वरूप समाज के बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। अतः इतिहास की पुनर्संरचना में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों के माध्यम से जातियों और जनजातियों का इस क्षेत्र में प्रव्रजन या माइग्रेशन का इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है। कुदरा नदी के मुहाने रोहतास के सेनुवार के पुरातात्विक अवशेषों से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में नव पाषाण युग 2200 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के समय बेलन घाटी के कोलडिहवा से कुछ लोग पलायन कर पूर्व दिशा में कैमूर श्रृंखला के तलहटी में नदियों और नालों के किनारे बसने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की। यह धान उपजाने वाले और सुअर को पालतू जानवर बनाने वाले लोग थे। गढ़वत के निकट 1106 ईसा पूर्व ईसा पश्चात के सिलसिला अभिलेख से भी यह पता चलता है कि धार्मिक अवसरों पर सुअरों की बलि दी जाती थी। यह क्रम आज भी गांव की गवहेली पूजा, राह पूजा, भर और भुइया जाति के जन्म और विवाह के रीतियों में और गायडा जैसी परंपराओं में विद्यमान है। उत्तर नवपाषाण युग यानी 2000 से 1950 ईसा पूर्व में अवशेषों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता से विस्थापित कुछ लोग यहां आकर बसे और अपने साथ हड़प्पा की मृदभाण कला शैली, गेहूं व अन्य अनाज उपजाने की विधि तथा मिट्टी के पक्षी जो मृत्यु देवी के धार्मिक प्रतीकात्मक थे अपने साथ लाए। ताम्र युग यानी 1800 से 700 ईसा पूर्व के काल में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मेगालिथ या महापाषाण संस्कृति विंध्य श्रृंखला के उत्तरी ढलान, तलहटी व नदियों के किनारे मृत्युपरांत स्मृति स्मारक के रूप में देखने को मिलता है। मुंडेश्वरी के पवरा पहाड़ी पर पत्थरों को गोलाकार वृत्ति में संजोने की यह प्रथा अब भी विद्यमान है। संभवतः मुंड के वध के पश्चात वहां की प्रजा ने इस प्रथा का आरंभ उस पहाड़ी पर किया और यह जीवंत परंपराओं की एक अटूट श्रृंखला आज भी दर्शाती है। NBPW या उत्तरी कृष्णलेपित मृदभाण युग जो कि 7वीं से 6ठी और 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में थी, अनेक बस्तियों के स्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाहरी लोग अधिक संख्या में यहां आकर बसे। धार्मिक प्रतीकात्मक मिट्टी के सांप दुर्गावती नदी के किनारे कर्णपुरा से प्राप्त हुए हैं। अतः कैमूर क्षेत्र में सर्प पूजा की प्रथा उस काल से मान्य है। चूंकि चेरो जनजाति नागवंशी थे जो चुनार से राजगीर तक फैले हुए थे और बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम परिवर्तित हुए, यह उन्हीं से संबंधित माना जा सकता है। बौद्ध धर्म के पतन पर उन्होंने शाक्त हिंदू धर्म अपना लिया। 103 ईसा पश्चात शक कुषाण काल के समय सेनवार से मात्र देवी मूर्तियों की प्राप्ति इस संकेत को प्रमाणित करती है। इस स्तर पर एक सांस्कृतिक विच्छेद के साथ अनेक नए बाह्य तत्व भी दृष्टिगोचर

उच्चर होते हैं। चेरू जनजाति के लोक श्रुति के अनुसार प्रथम शताब्दी में आंध्र जनजाति ने उन्हें कुछ संख्या में निष्कासित किया। तत्पश्चात कुछ चेरो और मुंडा छोटा नागपुर की ओर पलायन किए। कालांतर में सोयरी जनजाति संभवतः सिथियाई शक जिनका टोटम या प्रतीकात्मक देव गणेश थे ने चेरो व मूषक जनजातियों को पराजित कर इस क्षेत्र पर 500 से 990 ईसा पश्चात के दौरान राज्य किया। ये सुइरी शिव भक्त भी थे जैसा कि पतेसर बैद्यनाथ व अन्य बस्तियों से दृष्टिगोचर होता है। 14वीं शती में कैमूर क्षेत्र में सिकरवार का पदार्पण हुआ। बाघामल और देवामल नामक जनजातीय राजाओं द्वारा चौसा के राजपुरोहित विश्वनाथ के पुत्र का अपहरण कर अपने कुलदेव मंडलेश्वर नाथ को बलि चढ़ा दी गई। प्रतिशोध में चौसा के सिकरवार राजा लक्ष्मीमल ने आक्रमण कर उन्हें मार गिराया। गढ़वत को जमींदोज कर दिया गया। भुड़कुड़ा और सासाराम सहित बाघामल और देवामल की संपूर्ण राज्य पर कब्जा करते हुए चैनपुर में अपनी तहसील कचहरी स्थापित की। कैमूर पहाड़ियों पर उसी काल के लगभग उड़ाव जनजाति के लोक गीतों से ज्ञात होता है कि रुईदास यानी रोहतास गढ़ किला सरहुल की रात जब सभी मर्द मदमस्त पड़े थे मुसलमान राजाओं का आक्रमण हुआ। महिलाएं तब वेश बदलकर युद्ध भूमि में प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में कूद पड़ी। यह प्रथा अभी भी जनी शिकार के रूप में प्रत्येक 12 साल में एक बार दोहराया जाता है। कैमूर में पटनवार का आगमन उनके रीति रिवाज व अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर 16वीं से 18वीं शती के बीच पाया जाता है। 16वीं शती के आरंभ में पटनपुर गुजरात से विजयमल राव एक डकैत के आतंक से पलायन करते हुए चुनार की तरफ पहुंचे और भरवतीगढ़ का नामकरण विजयगढ़ करते हुए वहीं बस गए। इनकी 20 पीढ़ियां इखलासपुर, अमाव, मुकरी, सिरहिरा, सिगठी व अन्य गांवों में मौजूद हैं। विवाह उपरांत बहुभोज के समय भेड़ की बलि तथा अन्य संबंधित रीतियों के कारण इन्हें भेड़ मरवा कहा जाता है। इसी गांव पटनपुर से 17वीं शती में उत्तर प्रदेश के कांटा गांव में बसे लोग अपने आप को कटहा भेड़ मरवा कहते हैं, चूंकि भेड़ों का कान काटकर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। यह कटहा जनजाति गोरखपुर और आजमगढ़ के 35 गांवों में फैली थी। मिर्जापुर के पचोखर गांव से पलायन कर कैमूर के फकराबाद गांव में बसे लोग अपने आप को पंजवा भेड़ मरवा भी कहते हैं। वे सामूहिक रूप से नवरात्र शुक्ल अष्टमी को अपने कुल देवी के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं और नई गौनेता दुल्हन अपने खून भरी हथेलियों के छाप से बलि अर्पित करती है। कुछ जनजातियों में हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता के रूप में पंचो पीर की प्रथा भी देखी जा सकती है। इसके अनुयायी जिन्हें पंचपीरिया कहा जाता है अपने देवकुल अथवा कुल देवताओं में 5 शिया मुस्लिम तथा 5 हिंदू देवी देवताओं को आज भी पूजते हैं। ऐतिहासिक रूप से 1813 में भी अमिना सती, सुभान, परिहार, अजब छलार, बलिमा या बलिहीन और ब्रितिया की पूजा पाई जाती है। 1885 में पंचोपीरी में गाजी मियां, हथिया, परिहार, सहजा माई और अजब सलार शामिल हैं। उस समय के लोकगीतों के लोकोक्ति के अनुसार अमिना सती, पंचोपीर, लंगड़ा तार, सुबर्णा तीर यानी ये सब सोरा नदी क्षेत्र में पूजमान थे। प्रव्रजन के क्रम में गुजरात से पंचोपीर धर्म पद्धति के सूत्र जोड़े जा सकते हैं। 16वीं शती गुजरात में

में शिया मुस्लिम प्रवर्तक अंगर शाह अर्जुन शाह ने कई कुनबी जातियों को प्रभावित किया। उसी प्रकार शाह इस्लामिया सैयद मत के इस्लाम शाह ने गुजरात में पिराना धर्म पद्धति का आरंभ किया। इन्होंने गंगा नदी व वाराणसी की तरफ आने वाले कई तीर्थ यात्रियों को अपनी महिमा से प्रभावित किया। स्वेच्छा से कुछ लोगों ने आधे हिंदू और आधे मुस्लिम संतों को अपने देवकुल में अपना लिया। इनको मतिया भी कहा गया। बाद में कुछ स्थानीय देवी देवता जैसे ब्रितिया और अमीना सती भी जुड़ गए। आज के बदले हुए भौगोलिक परिवेश में भी महिलाएं निष्ठा से इनकी पूजा अर्चना करती हैं। प्रव्रजन के क्रम में अकाल एक प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से अधिक संख्या में एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायन करते थे। गुजरात महाराष्ट्र मेवाड़ क्षेत्र में 1630 से 32 ईसा पश्चात को महा अकाल की स्थिति में शहंशाह शाहजहां द्वारा उस क्षेत्र को विशेष अनुदान मिलते रहे। बिहार के गवर्नर सैफ खान, जो गुजरात के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके थे, ने अनेक लोगों को बिहार में विस्थापित किया। जंगली क्षेत्र व पहाड़ की तलहटी में जमीन को साफ कर उन्हें विशेष सुविधा और जमींदारी प्रदान की गई। इसको वन कटाई कहा जाता था और जमींदारों को चौधरी की उपाधि दी गई। आज भी इस क्षेत्र के रीति रिवाजों में वर्षा संबंधित परंपराएं, जैसे सावन महीने में सभी धार्मिक स्थलों तथा पेड़ पौधों को जल अर्पित होता है, कराह पूजा में वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है, घाग भडरी की वर्षा अकाल संबंधित लोकोक्तियां अभी भी लोगों के लिए चरितार्थ हैं। इस प्रकार रीति रिवाज और उनमें विभिन्नता अनेक प्रकार से जाति और जनजातियों के प्रव्रजन के इतिहास पर प्रकाश डाल सकती हैं। बदलते परिवेश में परंपराओं का बदलता स्वरूप अथवा परिस्थितियां बदल जाने पर भी उनका पूर्ववत निष्ठापूर्वक निर्वाहन देखा जा सकता है। ये रीति रिवाज हमारे सभ्यता और संस्कृति का सारांश समाहित किए हुए रहते हैं और इनके माध्यम से मूक अतीत से संवाद स्थापित किया जा सकता है।

0: अभी आप साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे कैमूर के इतिहास में रीति रिवाज। वार्ताकार थी डॉक्टर सीमा पटेल। और अब आपको सुनवाते हैं एक और वार्ता। विषय है हिंदी के विकास में भोजपुरी का योगदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर नंद किशोर तिवारी।
1: हिंदी अपनी संपूर्ण शब्द गरिमा और अर्थ समृद्धि की दृष्टि से नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में एक सुविशेष स्थान रखती है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है और विश्व की 10 समृद्ध भाषाओं में अगली पंक्ति में समासीन है। प्राचीन समृद्धतम भाषा संस्कृत से भी यह इस दृष्टि से कहीं आगे है। इसकी शब्द संपदा को लक्षित करते हुए डॉक्टर सुनीत कुमार चाटुर्जिया ने ठीक ही कहा था, सभी महान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाओं की भांति हिंदी भी अब प्रांत या देश के संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोशीय स्थिति को प्राप्त कर रही है। अब वह विदेशी शब्दों की आवश्यकता पड़ने पर ज्यों का त्यों भी आत्मसात करने में समर्थ है। हिंदी ने नई संस्कृति की अभिव्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्वाह बखूबी किया है और अपने साथ अनेक भाषा उपभाषा तथा बोलियों एवं बोविधि नाना स्रोतों से उपलब्ध शब्द संपदा को आत्मसात कर अपने पेटे का विस्तार किया है। इसके कोश में अब 5 लाख से अधिक शब्द संकलित हो गए हैं, लेकिन इस महानद का विस्तार एक दिन का नहीं है और न कोई एक भाषा अकेले इतनी समृद्ध हो सकती है। समृद्ध भाषाएं अनेक उपभाषाओं से शक्ति प्राप्त कर बड़ी होती हैं। जैसे राजा को महान बनाने वाली उसकी प्रजा होती है, उसी प्रकार अनेक नदियां

उल्याएं संगमित होकर महानद का विस्तार करती हैं। भाषा भी बहते नीर की भांति है, अतः उसमें अनेक उपभाषाओं के शब्दों, भावों, लोकोक्तियों, मुहावरों, अभिव्यक्ति, संगीत का सम्यक योगदान प्रचुर मात्रा में उसे सदा प्राप्त होता रहा है। हिंदी में विद्वान भाषा शास्त्रियों ने अनेक उपभाषाओं को लक्षित किया है, जैसे मैथिली, अवधी, ब्रजी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है। ग्रियर्सन ने इस समस्त भूभाग को पश्चिमी तथा पूर्वी हिंदी में विभाजित कर बिहार की बोलियों मगही, मैथिली तथा भोजपुरी को हिंदी क्षेत्र से बाहर माना। पूर्व में अवधी और उसके आगे भोजपुरी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों को उन्होंने मात्र मान्यता दी। इस भाषागत दृष्टि में पूर्वी हिंदी में शौरसेनी तथा मागधी का भलीभांत समन्वय हुआ है। आज ऐसा शोधों से प्रकट होता है कि हिंदी के विकास में

भाषाओं को लक्षित किया है, जैसे मैथिली, अवधी, ब्रजी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है। ग्रियर्सन ने इस समस्त भूभाग को पश्चिमी तथा पूर्वी हिंदी में विभाजित कर बिहार की बोलियों मगही, मैथिली तथा भोजपुरी को हिंदी क्षेत्र से बाहर माना। पूर्व में अवधी और उसके आगे भोजपुरी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों को उन्होंने मात्र मान्यता दी। इस भाषागत दृष्टि में पूर्वी हिंदी में शौरसेनी तथा मागधी का भलीभांति समन्वय हुआ है। आज ऐसा शोधों से प्रकट होता है कि हिंदी के विकास में भोजपुरी का योगदान अन्यतम है। इसके तीन चार चरण तो संक्षेप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला तो यह कि मध्यकालीन हिंदी भाषा और उसका साहित्य, जो विश्व साहित्य के अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है, उसके दो कवि कबीर और तुलसीदास ने भोजपुरी भाषा के शब्दों, कहावतों और उसकी प्रकृति को अपने काव्य में विन्यस्त कर अपूर्व काव्य क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भोजपुरी शब्दों की प्रयुक्ति भाषा भाव छंदादि में अपूर्व चमत्कार उत्पन्न करती है। दूसरा यह कि हिंदी का पूरा संत साहित्य इसी भोजपुरी प्रदेश की देन है, जिसमें सारी स्वानुभूति काव्य स्वर में मुखरित हुई है। सारे संप्रदाय यहीं से आविर्भूत और प्रचारित हैं। तीसरे यह कि आधुनिक हिंदी के सभी पूर्वधा पुरुष लगभग भोजपुरी प्रदेश के हैं, जिन्होंने हिंदी का निर्माण किया है, समस्त विधाओं में अपना परचम लहराया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, श्री पूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र आदि अनेक नाम हैं जिनसे हिंदी का बोध होता है। वे सभी भोजपुरी भाषी और उसी प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले तेजोमय नक्षत्र हैं। इन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति के तत्व से हिंदी भाषा को समृद्ध किया। भोजपुरी की शब्द संपदा हिंदी के लिए साधन बनी। संस्कारच्युत भ्रष्ट शब्दों से निजात मिला। नए शब्द भोजपुरी की कोख से आविष्कृत हुए। इन निर्माताओं की आत्मस्वीकृति है। हमारे निबंधों की मूर्त भावभूमि हमारे ग्रामीण एवं भाषिक परिवेश हैं। उसी की छांव में हमारे हृदय में को विश्राम मिला है। चौथे यह कि आधुनिक प्रयोगवादी कवियों ने भोजपुरी लोकगीतों के अभिव्यक्ति को व्यंजना के स्तर पर स्वीकार कर अपनी पंक्तियों को खूब शाणित किया है। ऐसे भी अनेक नए प्रतीकों, बिंबों और प्रयोगों के लिए उन्हें भोजपुरी लोक साहित्य का दामन पकड़ना पड़ा है। वस्तुतः इस भाषा की मिठास और लोकप्रियता सभी इतर भाषा भाषियों को सम्मोहित करती रही है। महाराष्ट्र की सीमा में जाकर उतनी प्राचीन और समृद्ध भाषा मराठी को फिल्म के क्षेत्र में इसने सबको मात दिया है। इससे दूसरा और प्रमाण क्या चाहिए? हिंदी साहित्य की गीत और नवगीत विधा दोनों इससे प्रभावान्वित हुई है। भोजपुरी के सरस शब्दों ने विरस शब्दों को अपनी सरसता से साहित्य में स्थानापन्न कर दिया है। अज्ञेय जी ने कविता में मार्मिक शब्द और कोमल भावों की भंगिमा के लिए भोजपुरी से आनीत शब्दों का महत्व स्वीकार किया था। दिनमान जैसे दिगंत व्यापी साप्ताहिक में भोजपुरी के ग्रामीण शब्दों के तेवर पर वे मुग्ध थे और इसके लिए एक स्तंभ था हिंदी की शब्द संपदा। पश्चात यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इसके संचय और संपादन का भार विद्यानिवास मिश्र जी पर दिया गया था। ये दोनों भोजपुरी भाषी थे। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि किसी कवि की रचना में जो किसी स्थान विशेष में बोले जाने वाले शब्दों के मिलने पर उस स्थान विशेष से कवि का निवास होने या वर्षों तक करने का अर्थ समझना चाहिए। इस आधार पर कबीर तो काशी में रहे ही और तुलसीदास ने ही रहना यहीं रहकर मानस विनय पत्रिका की रचना की। अतः सर्वाधिक भोजपुरी के शब्द या भाषा का व्यवहार उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी के क्षेत्र में तो अनेक बोलियां या उपभाषाएं मार्ग में मिली, तो लेखकों ने इनमें भोजपुरी का ही वर्णन क्यों किया? इसके पीछे भाषा की अपनी विशेषताएं थीं और इस क्षेत्र का वैशिष्ट्य उनके साथ जुड़ा था। अयोध्या और ब्रज प्रदेश राम तथा कृष्ण की वैष्णवी भावना से ओतप्रोत था, अतः संत काव्य के लिए वह विशेष उर्वरायुक्त नहीं बन पाया।
भोजपुरी प्रदेश में रामकृष्ण को पूज्य मानते हुए भी स्वतंत्र आत्मानुभूति प्राप्त करने की साधना परंपरा

समानांतर गति से चलती रही। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से लगाव कभी प्रवास काल में भी इन भोजपुरियों ने नहीं छोड़ा। अतः आत्मानुभव जैसे सूक्ष्म भावों को भी वे भोजपुरी भाषा में अनुसूचित करने में सक्षम हुए। उनके साथ संप्रेषणीयता की समस्या रचनाकार और पाठक के लिए कभी नहीं रही, अतः उसका उन्मुक्त विकास हुआ जिसे भाषा और साहित्य के विकास का प्रथम सोपान माना जाता है। कबीर ने घोषणा की, हमारी भाषा पूर्वी, भोजपुरी के पहले कवि, आज वे स्वीकृत हुए और हिंदी के पहले संत कवि बने, संत परंपरा के उद्गाता पुरोधा कवि कबीर। शास्त्र को कान से सुना, स्वतः आँखों से देखा और अनुभव को अपनी सधुकड़ी भाषा में वितरित किया। पलाश के उजड़े वन को निहारते कहा, खंखड़ भये पलाश। यह उजड़ा हुआ टेसू का वन था जिसके लिए खंखड़ से बढ़कर भोजपुरी के सिवा दूसरा शब्द नहीं था। उस पर भोजपुरी संस्कृति की मुहर लगी थी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने निष्कर्ष दिया, संतों की परंपरा का सूत्रपात इसी भोजपुरी प्रदेश में हुआ और लगभग अधिकांश कवियों और संप्रदायों की भूमि भोजपुरी क्षेत्र है। उनकी भाषा भोजपुरी है, हरि मरि हैं तो हमहूँ मरि हैं, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। इस तरह बावरी पंथ की बावरी साहिबा, बुला साहेब, कुलाल साहेब, भीखा साहेब, धरनी दास, दरिया दास, शिवनारायण दास आदि अनेक संप्रदायों के संस्थापक कवि सभी भोजपुरी भाषी थे। इनको हटा देने से हिंदी में चांदनी समाप्त हो जाती है। इन संत कवियों और इनके प्रवर्तित संप्रदायों का समस्त पूरे भारत और विश्व के कई देशों से संबंध है। जिन संतों का संबंध भोजपुरी प्रदेश से नहीं था, जैसे मलुकदास आदि, उन पर भी भोजपुरी प्रदेश का पूरा रंग चढ़ा हुआ था। दरिया दास कहते हैं, अब की बेर बकस मोर साहेब जन्म जन्म के चेरी हैं। शिवनारायण कहते हैं, सूतल रहली में नींद भरी गुरु दिहलन जगाए। इन्होंने गेय साहित्य का भंडार कायम किया। भारतीय साधना का हिंदी भाषा के दृश्य से जितना विकास हुआ वह संतों के माध्यम हुआ। खंजरी लेकर गाते हुए गांव में संतों की वाणियां पहुंच गईं। लोक कंठ ने उन्हें अपने भीतर स्थान दिया। कबीर के साथ पीपा रैदास, धन्ना, दरिया के अनेक शिष्यों की परंपरा पूरे 500 वर्षों और उससे आगे के समय का प्रतिनिधित्व करती है। कबीर और तुलसी तो हर प्रदेश की संपत्ति बन गए, गृहस्थों के लिए, साधुओं के लिए और संतों के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस जैसे महाकाव्य में एक पात्र से इस प्रकार कहलाया, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जनता के लिए उनका आदेश था, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, और कहस एक एकन से कहाँ जाई का करें। इतना ही नहीं, अकरे अड़ुक अहिवात आखत ऊख खुनिस पैसार अक्सर निहोरा चोप खोच आपन ऐसन पहिरावन नियन आदि सैकड़ों शब्द मुहावरा और कहावतों का प्रयोग करके भोजपुरी भाषा के अर्थ गौरव की ओर झांकने का उन्होंने इशारा किया। भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित आचार व्यवहार के अनुसार उन्होंने अपने काव्य की मर्यादा निर्धारित की। मीठा आ भर कठवती को कहा, मीठो और कठवती भरो। राम लला नहचू की भाषा को विद्वानों ने भोजपुरी का जामा पहनाया हुआ माना। घरे घर फिरे ले नौनिया तो गोतनी बोलावे, हमारा राम लला के नहचू सखिन सब गावे। भोजपुरी के रागात्मकता का संबंध वैदिक संस्कृत से है, अतः वहाँ से चलते चलते इनमें आज तक की प्रयुक्ति ने अपने पूरे अर्थ विस्तार को अपने में समेट कर कवियों साहित्यकारों में नव दृष्टि उद्भेदन की क्षमता प्रदान की है। यदि मानस के भरत यह कहते हैं, मोरे सिर राम ही के पन ही, तो इसमें संस्कृत के दो बहुत पुराने शब्द उपानह और पिनद्धि आकर मिल गए हैं, जिनसे पनही का स्वरूप गढ़ा गया है। स्वतः गलकर एक नया उन्मेष इसमें प्राप्त होता है। यह काम न जूता से हो सकता है और न पादुका से ही। कुल मिलाकर देखने पर यह प्रमाणित होता है कि हिंदी के स्वरूप विस्तार में भोजपुरी का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी मीठी भाषा है जो और साथ साथ कर्मठता की भाषा है, आंतरिक अनुभूतियों की सहज प्रेषणीयता

0: की भाषा है जिसके सहज संयोग से हिंदी का प्रासाद गगनचुंबी दिखाई पड़ रहा है।
1: साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे वार्ता। लोकमाधुरी कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीत। आवाज मदन राय की है, भरत शर्मा व्यास का संगीत है। एल्बम में सुनिए निर्गुण गीत।

आवाज थी अरुण मिश्रा गुंजन की, गीतकार संगीतकार थी सुनीता यादव। एल्बम था हमार धनिया। अगला कार्यक्रम हम बितेसवा जईबेना। इस एल्बम से गायक कलाकार हैं दीपक त्रिपाठी और अनन्या सिंह। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

आवाज़ें हैं गुलशन झा और शिल्पी राज की। संतोष साहिल की रचना है, धुन बनाई है छोटू रावत ने। एल्बम का नाम जपत रहा।

0: रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: दिन में 3 बजे

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए पेश है प्रोग्राम रंग तरंग। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आनंद बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रियाज़ुर रहमान सागर का लिखा ये गीत आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ों में। एल्बम थी कभी तो नजर मिलाओ।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
4: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सितम एल्बम से ये गजल आपने सुनी चंदनदास की आवाज में, बशीर बद्र का कलाम था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को

0: सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ओपी नैयर का ये सुरीला संगीत था। मंजूर सुल्तानपुरी के बोल, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, फिर वही दिल लाया हूं इस फिल्म का गीत था। और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत, आपने सुना। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओ, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान, एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं, थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉग इन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे

सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है। और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों की सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओ हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीज़ों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते परदेसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है श्रोताओ, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है, और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहां फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओ, तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है, ताजी हवा, चांदनी रातें परदेशियों

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। SH बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसी ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं। जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें जरूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दियों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल

समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है, आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर

रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ। मुझे पहाड़ों पर जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूँ तो पहलगाम, शिलांग और खजियार, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसे जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

0: रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोता, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक
1: उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएस सिंह की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक

आप कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी को यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम एक प्रगतिशील प्रणाली है। भारत के कई विश्वविद्यालय और संस्थान, साथ ही विश्व भर के कई संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में इस प्रणाली को लागू किया है। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज मनाई जा रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज अदा की गई है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में भी आज सुबह खास नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने की घटना हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहान CUET 2026 के इम्तहान की तरमीम शुदा तारीख और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। NTA के मुताबिक इम्तहान अब 31 मई, 6 और 7 जून को लिया जाएगा। आज होने वाला इम्तहान ईद उल अज़हा के सबब दूसरी मुकर्ररा तारीख में लिया जाएगा। NTA ने बताया कि एतवार को इम्तहान देने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और NTA की वेबसाइट cuet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। 6 और 7 जून को इम्तहान देने वाले बाकी उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि CBSE के 12वीं के इम्तहान की कापियों की जांच के अमल में कुछ कमियां आने के बाद अब दोबारा जाँच शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में CBSE अफसरान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में जनाब प्रधान ने कहा कि अफसरान यह यकीनी बनाएंगे कि सभी तालिब इल्मों की शिकायतों को हल किया जाए और सभी सतह पर जवाबदेही तय की जाए। बेज़ाब्ते की जिम्मेदारी लेते हुए वजीर तालीम ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और मुनासिब हल निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM के तरक्की याफ्ता निज़ाम है। भारत की कई यूनिवर्सिटी और इदारे, साथ ही दुनिया के कई इदारे इस निज़ाम को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब CBSE ने मुल्क में इस निज़ाम को लागू किया है। जनाब प्रधान ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ स्कैन किए गए सफात की जांच पहली बार CBSE के जरिए OSM सिस्टम से की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात शेयर करेंगे। यह इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां एडिशन होगा। इसका नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ईसार और कुर्बानी का अजीम त्यौहार ईद उल अज़हा आज पूरे मुल्क में अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इस मौके पर ईदगाहों, मसाजिद और मुख्तलिफ मकाम पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। इधर बकरीद के पेश नज़र पूरी रियासत में तहफ़ुज़ के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकाम पर इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी खास नज़र रखी जा रही है। बकरीद के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रियासत के गवर्नर सैयद अता हसनैन और वज़ीर आला सरवर चौधरी ने आवाम को मुबारकबाद दी है। रियासत के शुमाल और मशरक़ी हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली गिरने और ज़ालाबारी के वाक़यात में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 और मुंगेर, भागलपुर, मशरक़ी चंपारण और मगरबी चंपारण में 1-1 शख्स की मौत हो गई। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार करते हुए महलुकीन के वर्षा को 4-4 लाख रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने के वाकया पेश आया। इतला मिलते ही मुकामी रेल इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे नुमाइंदा ने बताया है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। महकमे मौसमियात ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी ज़िले के कुछ हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर गुज़श्त 24 घंटों के दौरान कैमूर ज़िले का भभुआ 42.2 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा

0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से काशफी

0: त्योहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्योहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी

0: में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में।

0: सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का, लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता

0: प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोता और सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी जो

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है, क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि गर्मी आ रही है। बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो है।
0: क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए।
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय हैं, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है, या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी
1: बिल्कुल
0: बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: फंस गई थी।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ, और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं। फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, इन बकरी ईद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपने फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं
0: जी,
1: जी।
0: और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है, ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं
1: जी।
0: देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये।
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो भी अलग ही इतना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल।
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में।
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके
0: बिल्कुल,
1: काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए। हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी।
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल। और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है, उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता।

0: काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है। साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
0: जी
1: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी,
0: देखिए।
1: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लमल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री
1: बिल्कुल,
0: से
1: अब
0: सम्मानित
1: पढ़ाई
0: कर।
1: ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल।
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो
0: जी
1: हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल,
0: रहा
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये तो
0: आए
1: होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए, एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: 100 झूठ
0: बोलना
1: बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना, असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को, कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा

0: सर्वश्रेष्ठ है तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है, उनके प्रयास की तारीफ करे परिणाम की नहीं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की, प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है, तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए

0: झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
1: क्या बात है।
0: ताकि वो और आगे कर सकें।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे आईएएस आईपीएस का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: नहीं कि हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
1: जी
0: वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
1: और
0: इस
1: अब
0: तरह
1: क्या
0: से।
1: करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बता

0: आरती
1: दिल की बात।
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची
1: बिल्कुल
0: और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता

0: से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा
1: जी
0: भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए
0: जी
1: उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है, तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी जाना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम
1: ज्यादा
0: है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। यह दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जो श्रोता है हमारे वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर जब गेम खेलते हैं जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल, वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है

0: में स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर
1: और
0: पड़ता
1: ये
0: है।
1: जो गेमिंग जो है ना, जो होती है ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
0: तो
1: उन्हें
0: भी
1: कुछ पॉइंट से
0: हाँ
1: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
0: जी
1: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
0: जी कोई नहीं।
1: सॉरी समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करिए या किताबें पढ़े।
0: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: दिया था हाथ मिलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम न रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलू माँ
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
2: आरती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है, लोग देर रात तक जाकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद

0: कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते
1: बहुत
0: हैं।
1: से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती, ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही
0: है।
1: बात है, फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल,
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी की
0: चाहिए?
1: रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे
1: कोई
0: स्पीड
1: आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर
0: कम।
1: तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे। तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर रहे
0: कि
1: हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल लेने खड़ा रखें, और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल लेने आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात है
0: वाह
1: तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे दोस्त होते हैं जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: और
0: क्योंकि अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती है।
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

सखी सहेली।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो
1: जी
0: आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा
1: जी
0: लगता है
1: जी
0: उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े
1: अरे
0: हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गांव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतनी समय गेहूं कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के
1: मुझे
0: बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, उधाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी
1: जी
0: पक्की
1: हवा
0: लिसनर
1: महल,
0: हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 बजे 7 जब से यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए
1: जी जी
0: नरेंद्र जी,
1: जी
0: वैसे
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: क्या
1: जी
0: करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: जी पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे
0: काम कहाँ
1: तो
0: करते
1: हमारे
0: हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम, खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम? खांजीपीर उदयपुर से, झीलो की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी है, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी।
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ मैं।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें। अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं। आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छाया गीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ। कभी कभी नहीं सुन पाओ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छाया गीत।
1: छाया गीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में एक गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है।

0: या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है, पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं।
0: हाँ मैम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको।
1: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है, कई जगह से कट
0: जी,
1: फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
1: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में

0: का ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी?
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो या नया प्रोग्राम शुरू

0: किया गया है, मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
1: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
0: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
1: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
0: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
1: अपने
0: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी।
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसाने का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ, सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी दो माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त बेंगलुरु लेकर विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज मनाई जा रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज अदा की गई है। बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। मौसम विभाग ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में

0: आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में दो दो तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्य समाचार समाप्त हुए।
1: के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों से पहले हमारी श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर अपराह्न के 5:05 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 5:10 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन सुनेंगे और हमारी बातें होगी हमारी सेनाओं को धन्यवाद कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर। शाम 6 भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनेंगे और शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार सुन पाएंगे। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। शाम 6:40 पर सुन पाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत और प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनेंगे शाम 7:00।

संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुन पाएंगे शाम 7:15 पर और शाम 7:25 पर चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।

शाम 7:50 पर ईमेल आधारित फरवाशी कार्यक्रम ई मन पसंद सुन पाएंगे और शाम 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। पुनः लौटेंगे आप सबके सेवा में रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम लोकधारा के साथ, इसके अंतर्गत सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत।

गजलों का कार्यक्रम महफिल सुन पाएंगे रात्रि 9:15 पर, और विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुन पाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स रसरंग, और कार्यक्रम चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम चित्रपट तराने में सुनेंगे कुछ फिल्मी गाना। अगले दिन के कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे रात्रि 10:55 पर, और लगाएंगे मौसम का पूर्वानुमान। और रोज़ाना की तरह आज भी हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही 11:05 पर। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। अब हम सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम का पहला गीत नरेश रैना की आवाज़ में, गीत और संगीत नरेश रैना का ही है। एल्बम का नाम है विनती सुनो मेरे श्याम।

कार्यक्रम का अगला गाना राज तिलक एल्बम से साधु बैंड ने इसे गाया है। धनंजय साही के लिखे इस गीत को चंद्र कमल ने संगीत दिया है। एल्बम है राज तिलक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भक्ति संगीत में सुनते हैं आखिर में एक और भक्ति रचना अनूप जलोटा के आवाज़ में। रवि चोपड़ा के गीत हैं, शिवा चोपड़ा का संगीत है, एल्बम है शिव प्रिय हैं गंगा को।

अनूप जलोटा के गाए इसी शिव भजन के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी।

कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम युववाणी। ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हमारी बातें होगी हमारी सेनाओं को धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ इवन प्रेस कीपर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेनाओं के दिए गए योगदानों के बारे में व्याख्यान या गाथा सुनाई जाती है। तो आज हम बातें करेंगे हमारी सेनाओं को धन्यवाद के बारे में, और फिर बातें करेंगे वीर सावरकर की जीवनी के बारे में, और कुछ करंट अफेयर्स भी लेंगे, जिसमें जानेंगे सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं हमारी सेनाओं का धन्यवाद यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इवन प्रेस कीपर्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ इवन प्रेस कीपर्स के नाम से जाना जाता है, का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सभी बहादुर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद। और साथ में

खरीद का भी बहुत सारे धन्यवाद। श्रोताओं, वैश्विक शांति के लिए हमारे जंबाज सैनिकों का त्याग, समर्पण और साहस अतुलनीय है। वे अपने घर परिवार से दूर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लोगों को सुरक्षा और संघर्षरत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इस दिवस पर हम उन सभी वीर शांति सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को भी सलाम करते हैं जिन्होंने शांति के रास्ते पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक हैं और इतिहास में हमारे सैनिकों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया है। ये रहा हमारी बातें, हमारी सैनिकों का धन्यवाद। इसी कड़ी में सुन लेते हैं खूबसूरत सा गीत, यानी मानी के चलिए देशभक्ति गीत बी प्राक की आवाज़ में, और इसे एल्बम से लिया है, केसरी एल्बम से। गाने का बोल है तेरी मिट्टी।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। अब हम बातें करेंगे वीर सावरकर की जीवनी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को, यानी कि आज ही के दिन हुआ था। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी समाज सुधारक, लेखक और हिंदुत्व विचारधारा के प्रणेता थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की नेतृत्व किया और अंडमान की जेल में असीम यातनाएं सही। उनकी प्रारंभिक जीवन में शिक्षा, उनके माता पिता और के बारे में भी जानेंगे। शिक्षा उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन

0: कॉलेज से स्नातक किया और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन यूके चले गए। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। युवावस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया था। मित्र मेला और अभिनव भारत जैसे देश के अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने मित्र मेला नामक गुप्त संगठन बनाया जो बाद में अभिनव भारत में बदल गया। वीर सावरकर ने 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने पुणे में पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई। श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति पर लंदन गए, वहां इंडिया हाउस में रहकर क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया और द फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। उन्होंने 1857 का स्वतंत्र समर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। नासिक के कलेक्टर की हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल भेजने के आरोप में उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत लाते समय फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर वे जहाज के शौचालय के रास्ते समुद्र में कूद गए और तैर कर किनारे पहुंच गए, लेकिन पकड़े गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 आजीवन कारावास, कुल 50 वर्ष की कठोर सजा दी गई और अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, वहां पे उनको भेज दिया गया। सेलुलर जेल में उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अमानवीय यातनाएं सही। 1924 में जेल से सशस्त्र रिहाई के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सुधारक को समर्पित कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व, हु इज द हिंदू पुस्तक लिखी और हिंदुत्व को एक राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में गढ़ा। उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव, खान पान की पाबंदियों का कड़ा विरोध किया और दलितों के उत्थान, अंतरजातीय विवाह और मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाए। 1937 में रिहा होने के बाद वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक समरसता में उनके योगदान को भारतीय संसद डिजिटल दस्तावेज और दृष्टि IAS वीर सावरकर जैसे उच्च स्तरीय स्रोतों से विस्तार से पढ़ा जा सकता है।
1: Thank you.

अभी आपने सुना मधुरा भट्टाचार्य की आवाज़ में खूबसूरत सा बाबूजी एल्बम से गीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं और अब हम नज़र डालेंगे करंट अफेयर पर। सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अहमदाबाद सरखेज

से धोलेरा के बीच बनाया जा रहा है। 20,667 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम रफ्तार से चलेगी। इसके शुरू होने से अहमदाबाद के धरोला की यात्रा का समय घटकर मात्र 48 मिनट रह जाएगा। सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के प्रमुख बिंदु, इन कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों की परिचालन गति 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। अहमदाबाद धोलेरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय रेलवे का सेमी हाई स्पीड नेटवर्क वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए संचालित हो रहा है। केंद्रीय बजट के 7 नए हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु प्रमुख हैं। अपने नज़दीकी क्षेत्र जैसे बिहार और आसपास में चल रही नई रेल परियोजनाओं के बारे में और जानकारी के बारे में आप वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और गीत, जिसे हमने लिया है खुलम खुला प्यार करेंगे फिल्म से, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला ने इसे गाया है। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

सोनू निगम और जसविंदर नरूला के गाए इसी गाना के साथ है कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत बलेश्वर प्रसाद और उनके साथियों से कार्यक्रम भोजपुरी लोकगीत में।

0: अभी आपने सुना बलेसर और साथियों की आवाज़ में खूबसूरत सा देशभक्ति भोजपुरी लोकगीत है। अब इस गीत के तुरंत बाद अब चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार थोड़ी देर में।
1: प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना है। अबरुआ सभे चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के ओर से बदलल तारीख और एडमिट कार्ड जारी कल गई बा। NTA के मुताबिक अभी परीक्षा 23 मई, 6 जून और 7 जून के आयोजित कल जाय। आज होवे वाली परीक्षा ईद उल अजहा बकरीद के चलते आगे बढ़ावल गई रहे। NTA की ओर से बतावल गई बा कि इतवार के परीक्षा देवे वाला लइकन के एडमिट कार्ड जारी क दहल गई बा, जकरा के NTA के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कल जा सकेला। 6 जून और 7 जून के परीक्षा देवे वाला बाकी लइकन के एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कल जाई। कुर्बानी के त्यौहार बकरीद आज मनावल जा रहल बा। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनकर बेटा हजरत इस्माइल के कुर्बानी के याद में मनावल जाला। हमार संवाददाता बतैले हैं कि मौका पर अलग अलग मस्जिद और ईदगाह में खास नमाज पढ़ल गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी आज सवेरे खास नमाज अदा कल गई। एने बकरीद के लेके पूरा राज्य में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कल गई बा। संवेदनशील जगह पर एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात बा और सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखल जा रहल बा। बकरीद के मौका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोग के बधाई देले बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। ई प्रोग्राम मासिक रेडियो कार्यक्रम के 134वीं कड़ी हुई। एकर प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरा नेटवर्क, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कल जाय। वज्रपात के चलते अलग अलग घटना में प्रदेश में 8 लोग के मौत हो गई बा। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2, एकर अलावा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला में 1-1 व्यक्ति के मौत भइल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस घटना पर दुख जतौले बाड़े और मरे वाला लोग के परिवार के 4-4 लाख रुपया के मुआवजा देवे के निर्देश दिले बाड़े।

0: पटना के बाढ़ थाना इलाका के उमानाथ गंगा घाट के पास एगो नाव पलट गई। इस हादसा में 7 लोग डूब गई। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM बतौले कि एमए से 3 लोग के शव बरामद कई लिहल गई बा, बाकी 4 लापता लोग के खोजबीन जारी बा। इस हादसा में 7 लोग के सुरक्षित बचा लिहल गई बा। इस सब लोग समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा मोहिदुद्दीन नगर के परवल तोड़ के वापस आवत रहले, इहे दौरान हादसा हो गई। मौसम विभाग के ओर से मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिला के कुछ इलाका में तेज हवा के साथ पानी और वज्रपात गिरे के आशंका जतावल गई बा। यह दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के अनुमान बा। इन्हें पिछला 24 घंटा में कैमूर जिला के भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म जगह रहल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहले कि CBSE के 12वीं के परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमी आइला के बाद अब दोबारा मूल्यांकन के प्रक्रिया शुरू कैल जाई। नई दिल्ली में CBSE के अधिकारी के साथ बैठक के बाद पत्रकार से बात करत श्री प्रधान कहले कि अधिकारी ई पक्का करिए कि इस सब लइकन के शिकायत के दूर कैल जाई और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। गड़बड़ी के जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री कहले कि एकरा के दूर कैल जाई और सही समाधान निकालल जाई। श्री प्रधान कहले कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM एगो प्रगतिशील सिस्टम बा। भारत और दुनिया भर के कईयन गो विश्वविद्यालय और संस्थान इस सिस्टम के अपना रहल बाड़े। बतौले कि CBSE देश में पहला बार इस सिस्टम के लागू कैले बा। श्री प्रधान बतौले कि करीब 4 करोड़ स्कैन कैल पन्ना के मूल्यांकन पहली बार CBSE OSM तरीका से कैल गई बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103.4 MHz पर शाम के 6:10 हुए हैं। सुनते हैं किसान साथियों का कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसानवाड़ी के साथ हम हैं रनिया बहिन।
1: आ हम हैं रजू भाई।
0: तो सबसे पहले करिन जा स्वीकार हमने का
1: नमस्कार।
0: श्रोता सभे रउआ सभे लोगन के यह विशेष कार्यक्रम किसानवाड़ी में स्वागत बाटे।
1: आ देखी रनिया बहिन, हम चाहब कि आज हमने के थोड़ा सा बातचीत कर लिया, कारण कि हमने के गांव समाज में बहुत सा ऐसन भी बाल बच्चा बाड़न या ऐसन परिवार बा जे कि भरपेट भोजन ना करेला।
0: बिल्कुल हाँ हाँ।
1: तो देखी आज विश्व भूख दिवस भी है, तो हमने के ई कर्तव्य बनता कि जे भी समाज में वो स्थिति में बा उ जमना कारण से भी होके हमने के समाज में जे भी बा वो कोशिश करे कि सब कोई के कम से कम भरपेट भोजन मिले।
0: एकदम सही कहले रज्जू भाई, हमने के बहुत सारा ऐसा देखे के मिलेला कि लोग भूख से कल्पत आना तड़पत बाना, भूख थी उनका के भोजन नहीं खे मिलत आ बेकार आदमी लोग इन्ने उन्ने फेंक देत बाना।
1: जी आ देखी रनिया बहन, थोड़ा सा एकरा पर ध्यान देवे के चाहिए। इहो कहल गेल बा कि एक दिन के भूख मिटावे से आदमी के काम ना चली, तो यदि ओकरा के कोई रोजगार में हमने के जोड़ देतन जा, ओकरा के स्वरोजगार देतन जा, तो बहुत बड़ पुण्य के काम हुई।
0: जी जी जी, ऐसा भी देखा जाला रज्जू भाई कि शादी ब्याह में लोग बहुत सारा खाना बचेला आ के लोग मने एकदम अनाहुनी फेंक देवेलन, चाहे बहुत सारा बर्बाद लोग कर देते बाना। तो ऐसन में अगर जे जकरा के खाना नहीं खे मिलत, जे कुपोषित हो गई बाटे, जकरा के मने असमर्थ हो गई बाटे रोजगार करे से भी चाहे भोजन के जुटावे से में भी, तो के हमने के हर तरह से मदद करे के चाहिए।
1: आ देखी यह दिवस के जौन शुरुआत भई रहे 2011 से भई रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एगो तय कल गई कि मतलब आज 28 मई के विश्व भूख दिवस मनावल जाए। आ देखी हमने के

0: कोशिश ई रह कैल जाओ कि जे भी भूख के कगार पर बा ओकरा के हमनी के भरपेट भोजन यदि भूखल बा तो ऐसे तो कोई भी जीव पर दया करे के चाही। कहल भी गइल बा कि जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, वहीं छिपा तह आप। तो भूख से मतलब जे भी भूखाइल बा ओकरा के भोजन दिहल हमनी के कर्तव्य बा।
1: श्रोता सभे देखी भूख के खत्म करे खातिर खाली हमनी के सरकारे का नहीं है कर्तव्य जिम्मेदारी, बल्कि हमनी सबका जिम्मेदारी बाटे कि हमनी के भोजन के बर्बाद नहीं करें जा, जरूरतमंद के जो भी भाव भोजन ओकरा के साझा करें जा, दें जा। स्थानीय स्तर पर जहाँ भी हमनी के जागरूकता बाटे कि हाँ वो जंगा हमनी के खाना पहुँचा देवे के जाए, जैसे मंदिर में लोग भिखारी लोग बैठा रहे ना कतार बना करके, वहाँ पर हमनी के खाना वगैरह भोजन वगैरह दान दे सकता नहीं जा।
0: या एगो थोड़ा सा सोचे वाला बात भी हमनी के कि मान ली कि कभी हमनी के शादी ब्याह में खाना बने नहीं जा, जितना आदमी के खाना बने नहीं जा उतना आदमी ना पहुंच पे या कभी कभी बेसी हो जाला, तो वो खाना के हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि गांव के जो भी जुआ पीढ़ी बा ओकरा के बटोर के ले जाके वैसा आदमी के दिहल जा जेकरा भूख के लागल बा।
1: जी जी जी, तो आज भूख दिवस हवे, ए पर हमनी के मिलजुल करके अपने सोच के बदलल जाओ, और जे भी कुपोषित बाटे, जे भूख से तरह तरह मचैले बाटे, भूख ओकर पेट नहीं खे भरत, ओकरा खातिर के हमनी के थोड़ा सा जागरूक होके के और आगे बढ़ल जाओ, अपने सोच के भी बदलल जाओ।
0: जी, तो देखी अब हमनी के चले के अपना कार्यक्रम की ओर।
1: जी जी,
0: तो हम चाहते नहीं कि आज के एक किसान वाणी कार्यक्रम के जानकारी भी अपना श्रोता भाई बहनों के।
1: बिल्कुल बिल्कुल रजू भाई, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में रुवा का लेके आयल बानी सदिन फरिया फरिया के बतिया दी।
0: देखी रनिया बहन, सबसे पहले नू हमनी के अपना किसान भाई खाती कृषि पर आधारित खबर सुनावल जाई देश विदेश के अंतर्गत। फिर आज के किसान आलोक कुमार दुबे बानी, यहाँ से हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनल जाई जवना के विषय बा कि कृषि उत्पाद से किसान कैसे लाभ उठाई हैं, आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। फिर हमनी के नई उम्र की नई फसल के अंतर्गत धान के बिचड़ा लगावे खातिर सही समय का बा एकरा पर भी हमनी के चर्चा कर ली।
1: जी,
0: फिर आज के नसीहत में हमनी के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर ली कि यह तेज गर्मी के मौसम में लूक से कैसे बचाव कर जाओ। फिर आज के पत्रोत्तर में हमनी के जे भी श्रोता भाई बानी, जे भी किसान भाई बानी, जे हमनी के कार्यक्रम सुनी ना वहाँ लोग चिट्ठी पत्री भी भेजी ना जा, तो आज के पत्रोत्तर में वहाँ लोग के आयल चिट्ठी के हमनी के अपना कार्यक्रम में शामिल कर ली। आ फिर मौसम पूर्वानुमान आ मौसम पर आधारित जौन कृषि सलाह बा हमनी के अपना श्रोता भाई लोग के दिहल जाई, तो आई अब कृषि पर आधारित खबर सुनल जाओ देश विदेश के अंतर्गत।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुन लेवे के। देखिए खबर ई बा रज्जू भाई श्रोता सभे कि गन्ना जे भी उगा रहल बा ना किसान भाई लोग, तो गन्ना किसान के पंजीकरण खातिर के विशेष शिविर 28 मई 2026 बिहार में गन्ना किसान के बड़ सुविधा के साथे साथे सरकार द्वारा विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित कैल जा रहल बाटे। गन्ना किसान के डिजिटल व्यवस्था से जोड़े खातिर के पंजीकरण करावे का अंतिम तिथि 2 जून 2026 तय कई गल बाटे। किसान भाई समय पर अपन रजिस्ट्रेशन जरूर कराला। ओकरे अलावा देखिए मुजफ्फरपुर में बिहार लीची संगम 2026 का आयोजन कैल गई, जेकरा में कि 25-26 मई 2026 में रहे। मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में बिहार लीची संगम 2026 का शानदार आयोजन भइल, जेकरा में बिहार के कृषि मंत्री कहलन कि मुख्य फोकस ई बा कि बाग से लेकर के जितना भी निर्यात होखे वाला बाटे वहाँ तक एक मजबूत सप्लाई चेन विकसित करे के होखी, ताकि जोन ब्लीटिंग बाटे आ निंजा कार्ड जोन बाटे जैसन ओकर कंपनी बहुत सारा ऐसन ऐसन बाटे जेकरा जरिए हमनी के ओकर लीची का समूह मिल करके बना करके ओकर मूल्य निर्धारित कइल जा सके। आगे के खबर ही बाकी खरीफ फसल के तैयारी सरकार अनुदान भी दे रहल बाटे। बिहार में खरीफ सीजन जैसे कि धान भइल मक्का भइल आदि के तैयारी तेज हो गई बाटे। कृषि विभाग किसान के समय पर उन्नत आ प्रमाणित बीज उपलब्ध करावे खातिर के राज्य स्तर पर दिशा निर्देश जारी कैले बना, जेकरा तहत कई तरह के बीज पर 50% अनुदान का सरकारी अनुदान देहल जा रहल बाटे। एकरे आगे हमनी के देखी बात आगे कैल जाए।
0: तो देखी बड़ा निमन रौरा जानकारी देनी, आ अभी रौरा योजना के भी

0: बात बतावत रही। तो देखी रनिया बहन हमनी के किसान भाई खातिर नू बहुत सारा ऐसा योजना बा जावना के जानकारी हमनी के जानकारी के अभाव में किसान भाई जौन बड़न ई वंचित रह जात रहन आ ई ओकर लाभ ले निखन पावत। यही से नू हमनी के सब किसान भाई के चाही कि सब तरह के कृषि योजना के जानकारी रखस जावना के लाभ उठा सकस। तो देखी यही अंतर्गत हमनी के यही तरह के कृषि उत्पाद से किसान भाई के कौन कौन लाभ हो सकेला एकरा बारे में भी हमनी के जानल जाओ। तो एकरा खातिर हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनत नहीं जा
1: जी
0: है ना। वार्ताकार बानी आज के किसान के रूप में आलोक कुमार दुबे आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। ताई हमनी के यहाँ से विषय बा कि कृषि उत्पाद से किसान के होखे वाला लाभ।
1: जी बिल्कुल बहुत बढ़िया विषय बाटे
0: जी
1: सुनल जाओ सब कोई मिल के।
2: श्रोता सभे आज हमरा संगे एक किसान बानी आलोक कुमार दुबे यहाँ का टेकनपुरा विक्रमगंज का रहे वाला है आ मशरूम के उत्पादन बहुत दिन से कर रहल बानी साथे साथ सहजन का भी उत्पादन कर रहल बानी आ एकर उत्पाद भी बना रहल बानी। यहाँ से आज जानल जा कि अगर मशरूम होखे सहजन होखे या अन्य जौन हमनी का उत्पादन कर तनी जा कृषि से संबंधित चीजन का ओकर उत्पाद तैयार करके कितना लाभ हो सकेला ओके का करे के होई कैसे ही काम में आगे बढ़ल जा सकेला। आलोक कुमार दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत बा हमरा स्टूडियो में। पहले तो ये बताई कि रउरा मशरूम करत रही हाँ ये सहजन का ओर कैसे चल गई।
3: मशरूम के खेती तो हम 14-15 बरिस ले कर रहल बानी
2: जी
3: कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ल बानी
2: जी
3: कृषि विज्ञान केंद्र में आना जाना बा ओहिजे हम सहजन के गुण के जननी
2: जी
3: हमरा के लोग बतावल कि सहजन कतना बड़ा गुणकारी चीज बा
2: जी।
3: तो हम ओ प्रति आकर्षित भइनी सहजन के प्रति जब ये बहुत गुणकारी बा एकरा में सब तरह के विटामिन्स मिलता
2: जी
3: तो एकरा कोनो उत्पाद बनावल जाओ जिसे हम मशरूम के उत्पाद बनाई ना मशरूम के अचार बनाई ना मशरूम के नमकीन बनाई ना मशरूम के पापड़ बनाई ना बड़ी बड़ी बनाई ना। तो वही तरह से हमारा विचार आयल कि एकरा के सहजन के जोना के मुरिंगा कहल जाला एकर भी कुछ उत्पाद बनावल जा सकता
2: जी।
3: तो हम एकरा के प्रयोग कैनी आ मुरिंगा के जोना के सहजन कहल जाला एकर भी हम नमकीन बनैनी आ बहुत बढ़िया क्वालिटी के बनल
2: ओकरा बीज का
3: बीज के ना एकर पत्ता के
2: अच्छा
3: एकर पत्ता के धो के सुखवा के ओकरा के पाउडर बना के आ ओकर हम यूज कैनी नमकीन में
2: जी।
3: तो ये बहुत बढ़िया गुणकारी चीज बा तो एकरा के कैसे अधिक से अधिक यूज आदमी कर सकस खाए में तो एकर प्रोडक्ट बनाई या बिस्कुट बनाई पापड़ बनाई चाहे नमकीन बनाई
2: तो ओकरा पतई खातिर तो बहुत बड़ पैमाना पर खेती करे के पड़ी।
3: तो खेती करे के पड़ी तो किसान के पास जमीन बढ़ले बा
2: जी
3: तो हमें अपन सहजन के खेती करी ओकर फल बेची आ ओकर पत्ती के भी यूज करी।
2: अच्छा
3: तो एकर तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाई
2: तो फल का तो उतना विपणन नहीं हो पाई बिक्री नहीं हो पाई
3: बिक्री ना हो पाई एकर बिक्री बा शहरन में ज्यादे सहजन के मांग बा देहाती इलाका में कम बा बढ़िया बढ़िया शहर में ज्यादे मांग बा सहजन के मांग बा कहीं से गुणकारी चीज है
2: जी।
3: लेकिन एकर पतई के भी यूज हो रहा बा विदेश में तो एकर बहुत बड़ा मांग बा एकर पाउडर 1000 रुपए किलो तक बेचा रहा
2: जी। आयरन एकरा में बहुत ज्यादा पावल जाला और विटामिन से एकरा में बहुत ज्यादा
3: पावल जाला हर तरह के विटामिन बा
2: एकर पतई को तो बड़ी बहुत बना करके घर में
3: बहुत यूज कई जा सकता तो हम एकर प्रयोग कैनी है
2: एकर उत्पादन करके बेच भी रहल बनी रहुआ
3: हाँ हम एकर प्रोडक्ट तैयार कर रहल बानी
2: जी।
3: तो मशरूम से तो मारा एकर गुणकारी चीज बहुए आ एकरा बाद ये पैसा वाला भी चीज बा 10x15 के एक कमरा में हर एक महीना में 10,000 के हम मशरूम बेच लीना
2: जी।
3: तो 10x15 इतना जगह में जब महीना में 10,000 के हो रहा बा उत्पादन ओकर बिक्री हो रहा बा
2: जी
3: इतना तो कोनो फसल में रौरा निखी कर सकत सालों भर में 10x15 इतना जमीन में रौरा कोनो फसल में 10,000 रुपया नहीं कमा सकत सालों भर में
2: जी जी।
3: तो ये तो महीना में इतना कमा सकत नहीं
2: जी।
3: मशरूम में एगो प्रॉब्लम आ जाला कि कच्चा चीज ना बेचा पावेला कबो कबो तो मांग रहेला तो पूरा बेचाइयो जाला कबो कबो होला कि ना बेचा भी।

0: पहला तो वो करे के एकरा के मशरूम के सुखवा के ओकर पाउडर बना के ओकरा के प्रोडक्ट बनाई
1: जी,
0: अचार बनाई, बड़ी बनाई, पापड़ बनाई, बिस्कुट बनाई, नमकीन बनाई, आ एकर मांग हो रहा बा। जैसे मशरूम के मांग बा वैसे एकर प्रोडक्ट के भी मांग बा।
1: तो ये बेचा जा रहा हूँ
0: जी, हम फूड लाइसेंस भी ले बानी, एकर बढ़िया ले पैकेजिंग वैकेजिंग कह के एकरा के
1: मशीन रख ले बनी घरे
0: जी। हम पैकेजिंग मशीन भी ले बानी, हमरा के उद्यान विभाग से अनुदान भी मिलल बा, 33,500 रुपया हमरा अनुदान भी मिलल बा पैकेजिंग इकाई पर।
1: एक किसान जन बात हम कैसे आगे बढ़ सकेला ये सब काम करे खातिर?
0: किसान पहले एकर प्रशिक्षण लेस, खेती के प्रशिक्षण लेस, एकर उत्पाद बनावे खातिर प्रशिक्षण लेस
1: जी,
0: आ तब ये क्षेत्र में धीरे धीरे से कम ले शुरुआत करस, आ तब धीरे धीरे आगे बढ़स। फूड लाइसेंस घड़ी ऑनलाइन हो रहल बा, कम पैसा में, कोनो ज़्यादा पैसा भी नहीं खे लागत, आ ओकरा के मार्केटिंग के सीखस कि कैसे मार्केटिंग कइल जाऊ, पहले लोकल मार्केट में, फिर शहर में भी एकर मांग बा, तो धीरे धीरे एकर कर सकतान किसान। लेकिन प्रशिक्षण पहले लेवे के पड़ी, चाहे खेती खातिर लेवे के पड़ी या चाहे ओकर प्रोडक्ट बनावे खातिर प्रोसेसिंग खातिर लेवे के पड़ी। तो समय समय पर प्रोसेसिंग के आ उत्पादन के एकर के भी के में एकर चल रहल बा कार्यक्रम, चाहे किसान डायरेक्ट ओह किसान से भी संपर्क कर सकतान जे यह क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहल बा, ओहिजा जाके भी सीख सकतान
1: जी। तो अगर इस तरह से किसान आगे बढ़ी हाँ तो वो अपना घरे काफ़ी सुखी रह सकेल, अपन जन बात आमदनी बढ़ा सकेल। आलोक कुमार दुबे जी, टेकन पूरा विक्रमगंज से आप अली आ हमरा किसान लोग के इतना बढ़िया जानकारी देनी, एकरा खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखी श्रोता भाई, कितना नीमन लागल है यहाँ के बात बतैनी कि जौन कृषि उत्पाद बा एकरा के कैसे हमने के नीमन लाभ ले सकें।
3: जी, जी, जी, जी।
2: आ देखी ई एकरा खातिर समझे कि आलोक कुमार दुबे के बहुत बहुत धन्यवाद,
3: श्याम सुंदर तिवारी के भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखी रनिया बहिन, हमने के और चर्चा कर ली, ओकरा पहले आई थोड़ा संदेश
3: एकदम सुन ले हल जाओ।
4: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर

0: ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं।

0: और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
2: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
4: देखिए श्रोता सभी हमने के फिर से अपने कार्यक्रम में रुवा लोग के स्वागत करत तनी। देखिए श्रोता सभी धान का बिचड़ा पर हमने के बात कर जाओ कि कैसे लगावे के चाहिए। धान का बिचड़ा यानी कि धान के नर्सरी जोन बाटे वो खेती का शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होला, हाँ कि ना ये रजू भाई?
5: जी देखिए रनिया बहन कहल भी जला कि खेती बाड़ी जोन बानू इस समय से कर जला, जैसे कि आगे खेती आगे आगे आ पीछे खेती भागे जोगे, तो ये हमें चूके के ना चाहिए, समय से ही हमने के खेती करे के चाहिए।
4: अगर समझ ले रज्जू भाई कि बिचड़ा सही तरीका से तैयार हो जाए तो समझ ले कि पूरा फसल मजबूत हो जाए, हरा भरा हो जाए और ज्यादा उत्पादन भी देखें हमने के।
5: देखिए जैसे कि कहल गिल बा कि मान ली कि नींव मजबूत रही,
4: हाँ,
5: तो ऊपर कितनो बढ़िया मकान बनाई तो मजबूत रही या सुंदर रही
4: टिकाऊ
5: हुई, वैसे ही यदि बिचड़ा में ही हमने के थोड़ा मेहनत कर दिया तो समझे कि जौन फसल हुई तो बहुत नीमन हुई।
4: यानी कि हमने के जब भी कोनो चीज का बुआई करी जाए रोपाई करी जाए तो भाई ओकर बीजो उपचार तो बहुत जरूरी बाटे और दूसर की हमने के जमीन कैसन बा भूमि कैसन बा ऊपर हमने के जरूर एक बार ध्यान देवे के चाहिए।
5: देखिए इस समय अब धान के बिचड़ा डाले वाला आ गई बा, कारण कि जौन धान के बिचड़ा डाले के समय बा ई मई के अंतिम सप्ताह में, मतलब 25 मई से लेकर के 10 जून तक हमने के धान के बिचड़ा डाले।
4: बड़ा बढ़िया समय चल रहा है श्रोता सभी, अगर रुआ लोग लगा सकत नहीं तो जितना जल्दी हो सके लगा ले
5: जी। आ देखी एक में ये भी बात बा कि जौन किस्म बा, जैसे कि लंबी अवधि वाला किस्म जौन धान के फसल 130 से 150 दिन में तैयार होला, ओकर बिचड़ा डाले खातिर मई के चौथा सप्ताह से बिचड़ा डाले के जौन समय बा अंतिम मई के सप्ताह निमन मानल जाला। आ मध्यम किस्म के जौन जैसे कि हाइब्रिड सामान्य जौन धान के किस्म बा एकरा खातिर 25 मई से लेकर के 10 जून तक अच्छा मानल जाला। आ एकरा बाद अगेती या बासमती किस्म के जौन धान के बीज बा एकरा के बीज डाले खातिर नर्सरी डाले खातिर जून के पहला सप्ताह में एकरा के डाल देवे के चाहिए।
4: सबसे बड़ी बात बा नरज भाई कि धान का जौन अच्छा बिचड़ा किसान के मेहनत आ समझदारी का परिणाम होखेला
5: जी।
4: अगर रउआ शुरुआत में अच्छा कर दहनी तो समझ ले कि आगे का खेती जौन बा एकदम आसान हो जाए, पैदावार भी बड़ा बढ़िया होखे।
5: आ देखिए धान के बिचड़ा तैयार करे खातिर खेत में सबसे पहले खूब नीमन से ओकर जोताई करके आ जमीन के माटी समतल बना देवे के चाहिए। आ बीज के 15 से 20 घंटा तक भींगा के रखे के चाहिए। आ कियारी जौन बा एकरा में पानी भर के अंकुरित बीज के समान रूप से बिखेर देवे के चाहिए। आ 30 दिन में ई पौधा के रोपाई करे लायक हो जाला। फिर एकरा बाद बिचड़ा डालत खून खेत के अच्छा तरह से जुताई कैला के बाद जब माटी समतल हो जाओ तो क्यारी में पहले 10 किलो बीज खाती लगभग 2 से 3 क्विंटल सड़ल गोबर के खाद आ 5 से 6 किलो DAP मतलब हमने के खेत में डाल।
4: तो सबसे पहले जरूरी बात है जैविक खाद की ओर रुआ लोग चले जाए, रासायनिक की ओर तो एकदम मुँह नहीं देखे के भाई
5: जी।
4: तो एक तरीके से हमने के माने अपने खेत के बिचड़ा हमने के डाल करके आगे की ओर हमने के अपन
5: खेती शुरू कर सके,
4: शुरू कर तन जा और फसल भी बढ़िया हमने के मजबूत भी लें।
5: हमने के बिहार के जौन मुख्य रूप से मानल जाओ तो खेती ये समझी कि धाने बा, तो एकरा खातिर हमने के लाग के अपन खेत के बिया डाले वाला काम शुरू कर देवे के चाहिए।
4: एकदम
5: देखी रनिया।

0: बहिन अति घरिनु इतना गरम घाम हो रहल बा कि लगता कि आदमी के बाहर निकलला पर कब केकरा लूक लाग जाई आ कब केकरा बुखार लाग जाई। एह में हमनी के जरूरी बा कि थोड़ा मौसम जौन गरम बा एकरा में बचाव करके रहल जा।
1: एकदम न बचाव जरूरी बाटे, कहे से कि अभी के जौन चल रहल बाटे रजू भाई माने 42 से 44 45 डिग्री सेल्सियस चल रहल बाटे जौन तापमान बाटे, तो एह में अगर हमनी के अपन ही नहीं अपने मवेशी के अपने फसल के अपने बाल बच्चा बुजुर्ग सबके पर अगर ध्यान नहीं देनी जाए कहीं भी तनी सा मिस्टेक भइल गलती भइल अचूक भइल कि पानी नहीं खे कोई पियत चाहे हमनी के कोनो चीज़ बाहर जाता जाते ले देखे खा पी के नहीं जा निकलत तो सोच ले जा चूक गई नहीं जाता तबियत खराब हो कहीं के बाटे।
0: देखी लूक के बारे में कहा जाला कि कोसे कोसे पर हमनी के खाए के चाहिए।
1: हाँ,
0: मतलब पेट भरल रही तो लूक के असर थोड़ा कम होला आ ओहू में हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि कापार अपन तोप ढाप के ही घर से गमछी लेके निकल जाओ यदि जरूरी बा तब आ नहीं तो अभी तापमान जो चल रहा बा 45-46 सेंटीग्रेड तो एह में कोशिश कर जाओ कि हमनी के दोपहर के समय या 10 बजे से 3 बजे तक कहीं सुरक्षित स्थान पर रह जाओ। यदि बहुत जरूरी बा तो निकली तो पूरा अपना के सुरक्षित करके आ पानी उनी लेके निकली।
1: खाए पिए के बात अगर कहली रजू भाई तो मैं खीरा भइल ककड़ी भइल पनुआ भइल खरबूजा भइल तरबूजा भइल चाहे प्याज व्याज ले करके सतुआ तुआ तनी बांध करके भाई निकली एकदम बढ़िया से गमछा वमछा तनी भिंगा उगा करके रख ली अपने बगली में छत्ता भी रख ली एगो आ एकदम बढ़िया से चली आ खात पियत मस्ती करत एकदम अपने यात्रा के सफल मंगलमय बनाई।
0: मतलब रउरा निरोग बानी तो दुनिया रउरा खातिर निमन
1: ऐसे
0: कहल गिल बा कि आप भला तू जग भला अपना से बचा के रखी निरोग रही स्वस्थ रही
1: एकदम।
0: देखी हम देखत नहीं कि रउरा हाथ में एगो बड़ी निमन लिफाफा बा हरियर कलम से लिखल बा पता कि हमनी के कार्यक्रम खातिर चिट्ठी आइल बा तो हम चाहत नहीं कि के बानी जे हमनी के चिट्ठी भेजले बा।
1: देखी देखी ये हमारा हाथ में जो चिट्ठी रहुआ देखली हाँ वो चिट्ठी बाटे लिखे वाला बना ग्राम गोपी बिगहा जमुहार सासाराम डिहरी से, लिखे वाला बना जगन्नाथ सिंह अनिल सिंह सुनील सिंह रिंकी ज्योति काजल देवी रवि मौर्य और रुचिका सिंह।
0: देखी रनिया बहिन यहाँ लोग हमनी ही चिट्ठी भेजनी आ एकरा खातिर यहाँ सब इहो लिखले बन जा कि यहाँ लोग नियमित श्रोता बन जाए
1: एकदम एकदम।
0: तो देखिए यहाँ लोग के चिट्ठी भेजला खातिर इ लोग के
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद।
1: हाँ हाँ
0: आप देखिए यहाँ लोग आगे का लिखले बनी
1: यहाँ के लिखत अने कि यहाँ के मूंग के आ उड़द के खेती कैले बनी
0: जी।
1: इ लोग का समस्या ये बाटे कि मूंग उड़द का पतई जौन बाटे वो भूअर हो गल बा करिया हो गल बा धारीदार रंग के आ रोएदार झिल्ली जैसन हो रहल बाटे।
0: अच्छा
1: पतई का होता कि बहुत ओकरा में छेद छेद छेद छेद लगत बाटे मतलब नहीं एकदम चलनी जैसन
0: चलनी नियन हो जाला।
1: हाँ माने कि खाली पतइये नहीं खेल लगत खाली नसवे लगत बाटे पतई तो एकदम नामो निशान के नहीं खेल लगत तो पतई खाली लगकर रहल बाटे एकर का उपाय करत।
0: देखी पहले तो यहाँ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा यहाँ लोग चिट्ठी देनी आ अब देखी यहाँ लोग मूंग के जौन खेती के लिए बनी तो यह तरह के जौन रोग होला देर से बोअल गई जौन मूंग आ उरद के फसल होला ओकरे में एह तरह के रोग लागेला
1: यानी कि साफ बात बा कि यहाँ लोग देरी से उरद मूंग का खेती कैले
0: बनी एक एह रोग के मतलब हेयरी कैटर पीलर के प्रकोप एकरा में हो जाला आ एकर नियमित रूप से देखभाल करे के चाहिए।
1: अच्छा।
0: यदि रोग के प्रकोप होके
1: हाँ।
0: तो एकरा खातिर मिथाइल पैराथियान 50 EC के 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के फसल पर छिड़काव करे के चाहिए।
1: श्रोता सभी जरूर एकरा के छिड़काव करें बहुते लाभ होगी। अब हमनी के थोड़ा सा मौसम पर जान ले के
0: देखी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान जौन बा एकरा में अभी से 31 मई तक हमनी के जिला में कई जगह पर 1 से 2 स्थान पर मानी लू चले के काफ़ी संभावना बा एकरा बाद यह रोहतास जिला में 1 या 2 स्थान पर बदरी भी हो सकेला वज्रपात भी हो सकेला आ पानी भी पड़ सकेला। एमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा आ हल्का बारिश भी होके के संभावना
1: यानी कि लूहो चली बरखो होखी अंधियो होखी
0: हाँ।
1: बर्फबारी भी हो सकत
0: हाँ,
1: बाटे
0: बिजली भी गिर सकेला
1: बिजली भी है तो भाई बच बचा करके
0: हाँ, रहे के बाटे बच बचा के रखे के बा रहे के बा एकरा में अधिकतम तापमान समझी।

0: कि 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। न्यूनतम तापमान जोन रही 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सुबह में आ सांझ के सापेक्ष आर्द्रता जोन बा 70 से 75% आ 20 से 25% रहे के संभावना बा। ऐसा अनुमान कल जा रहा बा कि यह अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वैया हवा भी चल सके। एकरा में हमनी के किसान भाई खाती सलाह बा कि फसल में नमी के कमी ना होके दही, फूल फल झड़त होके या दलहनी फसल के देखभाल करत रही, पशुअन के भी गर्मी खाती देखभाल कर,
1: यानी कि पानी का हमेशा हमनी के चाहे फसल होके चाहे पशु होके मवेशी होके सबके पानी दिखावत रहे के बाटे।
0: जी आ देखिए एकरा खाती हमनी के बार बार फसल के सिंचाई करत रहे के चाहिए, उर्वरक आ कीटनाशक के छिड़काव अभी रोक देवे के चाहिए।
1: अच्छा।
0: पशु खाती हमनी के छाया आ के व्यवस्था करे के चाहिए, पर्याप्त पशु के पानी के व्यवस्था भी करे के चाहिए। एमे खड़ा फसल के सिंचाई रोक देवे के चाहिए आ कीटनाशक के भी हमनी के अभी आसमान साफ रहे तबे प्रयोग करे के चाहिए।
1: यही से तो कहल जला कि भाई जब भी बरसात होके पानी पड़े तो भाई अपने गढ़ा उढ़ा खान करके मवेशी खातिर कम से कम व्यवस्था कर ले। देखिए हमनी के पशुओं के ओर थोड़ा सा चले के ब्यान वाला पशुओं के प्रसूति बुखार से बचावे खातिर के खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन देही आ दूध देवे वाला पशु के खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के दर से दे देही। आ गाय के 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन आ भैंस का 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे देही। हरा चारा जोन बाटे की 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु दिन भर में जरूर खिया देही। तो देखिए अब हमनी के एकदम समय तो उराइए चलल बटे।
0: तो देखिए एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार।
1: जी जी जी
0: तो चली चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार और रनिया बहन दौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रज्जू भाई, साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

अभी हमारे किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। श्रोताओं, अब हम सुनते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत की पहली पेशकश नदिया के पार फिल्म से सुरेश वाडेकर और हेमलता ने इसे गाया है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और हेमलता को। कार्यक्रम की अगली पेशकश जसपाल सिंह की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फिल्म है नदिया के पार।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: अब हम सुनेंगे बलमा बड़ा नदान फिल्म से गाना। अभी सुनते हैं कल्पना पटवारी की आवाज़ में, सुजीत कुमार के संगीत में, बलमा बड़ा नदान।

0: यार।
1: इसी गीत के साथ सांझ गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर

0: सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें, नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं, कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी, और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया, और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं, और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वजह से कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना, तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता।

0: तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत की देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर

0: स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं, सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

0: सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास में स्वागत है आप सभी श्रोताओं को। नजर डालते हैं स्थानीय गतिविधियों पर। रोहतास जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य छात्राओं को सामाजिक सरोकार, स्वच्छता, अनुशासन और सेवा भावना से जोड़ना है।
1: देखने को मिल रहा है इस बार उतना ही आपको अगले बार भी देखने को मिले।

इस समय ज़िले के प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बजाय भीषण गर्मी, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के अधिक के कारण लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। रोहतास ज़िले के नोखा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सासाराम और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मंदिरों

द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन और अष्टयाम जैसे सामूहिक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा और सर्वे विशेष सर्वेक्षण को लेकर प्रशासनिक बैठकें हो रही है। आप रोहतास के पर्यटक या ऐतिहासिक स्थलों जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा या माँ तारा चंडी मंदिर घूमने की योजना अगर बना रहे हैं तो आप रोहतास जिला प्रशासन वेबसाइट के माध्यम से आगामी मेलों और आयोजनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज़िला में आपका स्वागत है। आज बकरीद है, बकरीद के मौके पर सभी हिंदू मुस्लिम स्थानीय सभी भाई मिलजुल कर बकरीद के पर्व मना रहे हैं और साथ में हमारे सारे रेडियो परिवार के तरफ से भी आप सभी बकरीद का हार्दिक बधाई। श्रोताओं, अब इसी कड़ी में सुन लेते हैं खूबसूरत सा गीत, खुलम खुला प्यार करेंगे फिल्म से।

अभी आपने सुना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, बातें हो रही थी स्थानीय गतिविधियों की, तो रोहतास जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी एवं तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि गर्म हवाओं एवं लू के प्रभाव से बचने के लिए सभी नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि लू एवं अत्यधिक गर्मी से के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने आमजनों को कई महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि यथासंभव धूप से में बाहर निकलने से बचें तथा अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को कपड़े, टोपी अथवा छाते से ढक कर रखें। साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। लोगों को ORS का घोल, नींबू पानी, लस्सी, छाछ एवं फलों के रस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। वहीं चाय, कॉफी एवं अत्यधिक शर्करा युक्त पेय पदार्थों से बचने को कहा गया है। दोपहर के समय भारी शारीरिक श्रम नहीं करने तथा लंबे समय तक तेज धूप में लगातार खड़े रहने अथवा कार्य करने से बचने की अपील की गई है। इसी के साथ अब समाप्त होता है संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास। अभी हमारे श्रोता सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल थोड़ी देर में।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो

देशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत,

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर कहा कि श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि PMAYG के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAYG के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
1: कल राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी है। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है, उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही।

0: कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है।
2: कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं, मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। ये अब तक का रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है, जो बिहार सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज पूरी अकीदत और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। एक रिपोर्ट।
3: त्याग और समर्पण के संदेश का पर्व बकरीद को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। अमन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में भी विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल eirnews_patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 26 से 28 मई तक बेंगलुरु में खेले गए इस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बताया कि शैलेश कुमार और हिमांशु यादव ने पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य के मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 39.9 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से 1 व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से 1 महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गाँव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से 1 महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने हजारों युवाओं को नौकरी दिए। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ जो 27 मई तक चला। मेले में कुल 10,882 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में जर्मनी, जापान, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान समेत विभिन्न देशों में 1,984 प्रतिभागियों को रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में भाग लेने आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने अपना अनुभव साझा किया।
3: भरोसेमंद मेला है के तहत हम लोगों को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई भी कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई आईटीआई किया है उसको भी जॉब मिल रहा है और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
2: रोजगार मेले के सफल समापन के अवसर पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा के पास आज सुबह एक नाव हादसे में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट।
2: आज समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहिउद्दीन नगर से वापस लौटने के दौरान एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह लगभग 5:45 पर हुई। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बींद टोली के कुल 14 लोग नाव पर सवार थे। राहत और बचाव दल के द्वारा 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि अब तक 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। अन्य 4 लापता लोगों की खोज की जा रही है। समस्तीपुर जिला प्रशासन और पटना जिला प्रशासन के द्वारा समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: मुंगेर जिले

0: उत्पाद विभाग की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास खड़ी एक पिकअप वाहन से 15 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप और 180 लीटर शराब जब्त की है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक और पहाड़ी क्षेत्र ऋषिकुंड मलमास मेले घूमने आई एक बच्ची की कुंड में स्नान करने के दौरान मौत हो गई। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 1032 बोतल केन बियर बरामद किया है। वाहन में सवार दो व्यक्ति भागने में सफल हो गए। वहीं जिले के शेखोपुर सराय के डोबाडीह से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय बाईपास रोड के नोनही मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एक नेपाली नागरिक को 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंकौल गांव में एक बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन सुबह 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: लखीसराय जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 562 एकड़ भूमि चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि भविष्य में यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। वर्तमान में लखीसराय बियाडा क्षेत्र में कुल 23 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 21 संचालित हैं। इनमें 20 राइस मिल शामिल है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रूपेश कुमार झा ने बताया कि सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के 12 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

0: इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों को सौंपे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार बालगुजर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बढ़िया प्रखंड के पाली, लखीसराय के महसोना और हलसी के कैंदी पंचायत में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। लखीसराय बाईपास रोड ओवरब्रिज के स्पैन में दरार आने के बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव द्वारा की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बाईपास रोड ओवरब्रिज के दोनों छोर पर लोहे का बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 30.74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पिपरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन निर्माण के शिलान्यास में भाग लिया। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने वाले जिले के 15 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिवों पर लगातार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने का आरोप है। जिले के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। बीते दिन पटना में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत जिले की सभी 76 पंचायतों के राजस्व गांवों में अगले 30 मई तक विशेष अभियान चलाकर किसानों को आईडी बनाया जाएगा। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को फार्मर आईडी अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इधर राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभान्वित पेंशनधारियों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा पेंशनधारियों को नया डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन भुगतान को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार जब तक लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा तब तक उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी जाएगी। जिले में अब तक 30,567 पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है जिसके कारण उन्हें पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की निदेशक प्राची कुमारी ने बताया कि पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लखीसराय संग्रहालय में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति प्राधिकारी सह संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष मृणाल रंजन ने किया।
1: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: इन्हीं सवालों और विमर्श के साथ आज हमारे साथ
3: दाम बोल देता है कि हाँ हम इतना में बेचेंगे। ऑक्शनर का काम कौन कर रहा है? किसान ही कर रहा है।
4: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:52 और 25 सेकेंड हुए हैं। सुनते हैं ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद।

स्वागत है हमारा कार्यक्रम ई मन पसंद। आप सुनेंगे इसके अंतर्गत फिल्मी गाना आपके ईमेल पर आधारित। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना। कुमार सानू की आवाज़ है, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, अर्चना कुमारी।

यशोदा हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कृति के पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है नाइट इन लंदन। सुनना चाहा है आप सबों ने।

आप हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, नाइट इन लंदन से।

ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बहने बुजुर्ग प्लेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।

0: कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और गीता दत्त के आवाज में। भरत ब्यास ने इस गीत को लिखा है, बसंत देसाई ने संगीत दिया है। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। सुनना चाहे आप सब उन्हें। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गाने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयानंद आर्या और परमानंद आर्या। सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। आप सबों ने सुनना चाहा है गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और गीता दत्त के आवाजों में।
1: डायरेक्ट सेलिंग में ध्यान रखिए कि आपको दलाल को नहीं सेल करना है, दलाल करिएगा तो फिर आपका लॉस ही हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग

अब हम सुनते हैं फिल्म साजन का घर से ये गाना, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजों में, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना चाहे आप सबों ने। चौसा बाजार, कुशवाहा मोहल्ला, छठू लाल मौर्या, अखौरीपुर गोला, सुरेश चौधरी, राधिका देवी, आशीष कुमार, ज्योति कुमारी और प्रकाश कुमार, ये श्रोता हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबने सुनना चाहे साजन का घर फिल्म से ये गाना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम को गति देते हुए सुनते हैं अगला गाना, फिल्म सरस्वती चंद्र से लता मंगेशकर ने सगाया है, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने, गांव टोरेवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी, ये श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र से।

अब हम सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म पारस मणि में। असद भोपाली के इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से संवारा है। सुनना चाहा है आप सबों ने। इसके लिए हमारे पास ईमेल संदेश आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। ये श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पारस मणि से।

अगली पेशकश फिल्म ताजमहल से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनना चाहे आप सब उन्हें। गांव फ्रांसी, ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दंतरेगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये श्रोता हैं संदीप मक्कड़ जालंधर से, सुरेश नारंग चंद्रनगर सहारनपुर से और अभिजीत गोहाकर और छोटा सा बच्चा टुक टुक। आप सबों ने सुनना चाहे ताजमहल फिल्म का ये गीत है।

इसी गीत की ख्वाहिशमंद ये श्रोता है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश।

अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत है, फिल्म है दो रास्ते। सुनना चाहे आप सबों ने, ये हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नवहाकर। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुहरकर। ये श्रोता हैं, फरमाइश करता है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप सबों ने सुनना चाहा है दो रास्ते फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

कार्यक्रम का अगला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है रंग, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, सुनना चाहे आप सब उन्हें। आप हैं पारसमणि रेडियो श्रोता संघ गांधी चौक बड़मेर राजस्थान से, बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से आप हैं दिनेश चौहान, नेत्रहीन डांगरी से बाबू जयपाल दिव्यांग, ये श्रोता हैं इसी गाने की ख्वाहिशमंद। वैशाली शैलेश गुणाकर, सुमिता गुणाकर, कुमारी ध्वनि गुणाकर, परी प्रिंस, एकांश गुणाकर, आप सब हैं आकाश हाइट बहादुरा नागपुर से। इसी गाने के ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से, कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण जय श्री। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म रंग से।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना अरविंद सिंह, स्नेहा पंत और सोनू निगम की आवाजों में। नालिस शेरवानी ने इसे लिखा है, साजिद वाजी।

जिसने संगीत दिया है फिल्म है तुमको ना भूल पाएंगे, सुनना चाहा है आप सबों ने। ये श्रोता हैं सकीबा, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, निसार, पंकज कुमार, आप सब हैं आकाशी सासाराम रोहतास से। इसी गाने के ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं छोटी बलियां करजत मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ अरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कपास हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राविया, मंतशा आशु अहमद फुलवाले, लखमिनिया जिला बेगूसराय से आप हैं समी महमद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार। इसी गाने के ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं शाहू नगर यावत माल से आप हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। राजनगर कांति निकेतन, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, धनबाद हीरापुर से प्रभात रंजन प्रसाद, रामचंद्र गुप्त और गुप्ता परिवार। क्वाथ बिहार से शेर जफर हसन नरगिस, जफर किशोर माफ कीजिएगा, इन्होंने सुनना चाहा है तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से ई मनपसंद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: अभी आपने सुना तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का ये गाना अरविंद सिंह, स्नेह पंत और सोनू निगम के आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4।
1: शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
5: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
6: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
5: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए

संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बज चुके हैं। सुनते हैं भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं एक बरसाती झूमर सुरेंद्र प्रसाद की आवाज़ में।

कार्यक्रम की अगली पेशकश रीना सिन्हा की आवाज़ में, ये सुनते हैं एक कृषि गीत।

कार्यक्रम लोकधारा के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत प्रेम रंजन सिंह की आवाज़ में। इनकी आवाज़ में सुनते हैं एक खूबसूरत सा निर्गुण गीत।

0: प्रेम रंजन सिंह के गाए इसी निर्गुण गीत के साथ है कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब सुनते हैं गज़लों का कार्यक्रम महफिल। महफिल में सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत खुशबू एल्बम से।
1: प्रोसेस करके भी जो हम लोग उपजा रहे हैं उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो हम लोग

कार्यक्रम महफिल में मेहदी हसन से सुनते हैं एक और गज़ल। कलीम चंदपुरी ने इसे लिखा है, ललित सेन ने संगीत दिया है, गाया है मेहदी हसन ने।

मेहदी हसन के गाए इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

मेहदी हसन के गाए इसी गज़ल के साथ एक कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहां वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

साथ जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल

फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाती हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया, शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।

अभी हमारे श्रोता आज के फनकार सुन रहे थे विविध भारती से। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग के पहले गाने के रूप में सुनते हैं ख्वाजा की करम कर दो एल्बम से। रूबीना शबीना ने इसे गाया है, असज अजमेरी ने गीत लिखा है, आजम अली मुकर्रम ने संगीत दिया है। एल्बम है ख्वाजा की करम कर दो।

कार्यक्रम रसरंग की अगली पेशकश आयुष्मान चौधरी और राजमणि की आवाजों में नरेश कुमार त्यागी ने इसे लिखा है और स्वयं नरेश कुमार त्यागी ने ही संगीत दिया है। एल्बम है बदनाम हुए।

अब हम सुनेंगे ताश के गाए एक हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। इरफान ने लिखा है, सोहताश ने इसे संगीत दिया है, ताज ने गाया है और एल्बम है अनके दिखलन लव।

0: रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गाना ब्राज सरवरी की आवाज में, सिया सचदेव ने इसे लिखा है, गोविंद बात्री ने संगीत दिया है, एल्बम है मुझको बुला रहा है सितारे।

कार्यक्रम रसरंग के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना मोना वर्मा और जयवर्धन वर्मा की आवाजों में। संजीव पांडे ने इसे लिखा है, शशिकांत शर्मा ने संगीत दिया है, एल्बम है पिता का साया।

मोना वर्मा जयवर्धन वर्मा के गाए इसी हिंदी एल्बम सॉन्ग के साथ कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी के सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। सुनते हैं फिल्मी संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम चित्रपट तराने का पहला गाना अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है आरजू।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म अंगारे से श्वेता सेठी और अभिजीत निशा गाया है, समीर के बोल हैं, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत है, फिल्म अंगारे।

अब हम कार्यक्रम में सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है, फिल्म है अंटी नंबर 1।

कार्यक्रम चित्रपट तराने के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत बाबुल सुप्रिया के आवाज में। देव कोहली के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है बाजीगर।

बाबुल सुप्रिया के गाए इसी गीत के साथ हिंदी फिल्मी संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:55 हुए हैं। जान लेते हैं कल के मौसम समाचारों के बारे में। कल यानी 29 मई 2026 है। कल वर्षा शून्य के बराबर है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के

लगाई गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 60% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 15% रहने की पूर्वानुमान लगाई गई है। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। पवन दिशा 90 डिग्री की तरफ और क्लाउड कवर में ओक्टा में माने तो शून्य रहने की पूर्वानुमान लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। अभी आपने जाना रोहतास के मौसम का पूर्वानुमान। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हम चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी में समाचार के लिए थोड़ी देर में।

0: रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव। Prime Minister Narendra Modi today met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is

से बचाओ, चंगुल से बचाओ। यहाँ पर क्या दिया कि इमरजेंसी में भी मदद आता है, अगर बाढ़ सूखा या बीमारी में फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में भी काम आ जाएगा।